0: दूसरी जगह तक ले जाए जा सकते हैं।
1: गोभी के शीत मरुस्थल में बनाए जाने वाले मोबाइल घरों को यर्ट कहते हैं।
0: जी, और अब हमारा अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न था लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं।
1: इसका उत्तर है साथियों, लद्दाख क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले पेड़ को विलोवुड ट्री कहते हैं, जिनसे क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के किस गांव में पड़ता है।
1: इसका उत्तर है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के स्पीति घाटी के हिक्किम गांव में पड़ता है।
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। उन सभी श्रोताओं को हमारा शुक्रिया जिन्होंने भाग लिया और उत्तर भेजे। अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है,
1: भारत की किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है। श्रोताओं, आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आईडी यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भी।
1: प्रश्न एक बार मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप कृपया CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए।
0: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
1: एक चिर परिचित लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि यदि कोई प्रशंसा करे तो हमें तुरंत प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें तथ्यों की जाँच करनी चाहिए कि कहीं प्रशंसा किसी स्वार्थ के कारण तो नहीं की जा रही है।
0: जी,
2: प्यारे बच्चों नमस्ते। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कहानी। कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी। इस कहानी में लोमड़ी एक कौवे से रोटी का टुकड़ा छीन लेती है। कैसे छीनती है? बात यूं है कि एक बार एक कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला। रोटी का टुकड़ा उसने अपनी चोंच में दबा लिया। एक लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा जब कौवे के मुंह में देखा तो सोचा, यदि ये रोटी मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जानते हो फिर लोमड़ी ने क्या किया? नहीं भाई, आगे क्या हुआ ये तो मैं नहीं बताऊंगी। तो सुनो ये पूरी कहानी इस गीत में।

0: जा रहा कौवा अपनी रोटी गंवा बैठा ना।
1: क्यों भला?
0: क्योंकि उसने लोमड़ी से जब अपनी झूठी प्रशंसा सुनी तो वो घमंड में आकर गाने लगा और रोटी मुंह से गिर गई।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
3: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
4: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम,
2: राजा रवि वर्मा।
4: ये कार्यक्रम भारत के महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की जीवनी को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है और बताता है कि किस तरह से उन्होंने कैनवस पर अपने पेंट ब्रश से भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम दिया, जिसका शाश्वत प्रभाव आज भी उसी प्रकार से बना हुआ है।

0: अरे तुम लोगों ने ये क्या किया? कोचू मंगला, तुमने तो मंदिर की दीवार ही गंदी कर दी। इस कोयले से ये क्या चील बिलाऊ बना दिए? अभी तो मंदिर सफेदी से पुतवाया था, तुमने उसे ही गंदा कर दिया। ठहरो ठहरो, मैं अभी राजा साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ।
1: लगभग 150 साल पुरानी बात है। उस समय देश पर अंग्रेजों का राज्य था और छोटी बड़ी ढेर सारी रियासतें थीं जिनके राजा हुआ करते थे। ऐसी ही एक रियासत थी त्रावणकोर और उसकी राजधानी थी त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम को अब तिरुवनंतपुरम कहा जाता है और अब ये केरल राज्य की राजधानी है। उस समय त्रिवेंद्रम के राजा थे आयुल्यम तिरुनाल। उनकी ही रियासत में एक गांव था किलिमानूर, जहां का प्रबंध राजवर्मा देखते थे और उन्हें भी राजा कहा जाता था।
2: उनका एक हरे भरे बाग में मंदिर था। मंदिर को अभी हाल ही में

0: सफेदी से पुतवाया गया था। राजा राजवर्मा की बहन थी उमा अंबाबाई। उनके बड़े बेटे थे कोच्चू। कोच्चू उनका घर का नाम था। वैसे उनका नाम रवि वर्मा था। रवि वर्मा की बहन थी मंगला। दोनों एक दिन बगीचे में खेल रहे थे। खेल खेल में कोच्चू ने कहा,
1: मंगला।
2: हाँ?
1: आ देख, मैं तुझे इस सफेद दीवार पर घोड़ा बनाकर दिखाता हूँ।
2: ठीक है।
1: अच्छा देख, वो कोयले का टुकड़ा पड़ा है ना।
2: हाँ हाँ।
1: उठाकर मुझे दे।
2: अच्छा, ये लो कोयले का टुकड़ा।
1: हाँ।
2: अब बनाकर दिखाओ घोड़ा।
3: कोच्चू ने कोयले से लकीरें खींचनी शुरू की और देखते ही देखते घोड़े का चित्र बना दिया।
1: ये हाँ ऐसे ये मैंने बना दी घोड़े की टांग।
2: अरे वाह।
1: और ये इसकी पूंछ।
2: अरे तुमने तो बिल्कुल सही घोड़े का चित्र बना दिया। पूंछ उठाकर भागते हुए घोड़े का चित्र बहुत सुंदर है।
1: अच्छा ले कोयला ले, और अब तू भी बना सुंदर सा चित्र।
2: लेकिन मुझे तो ले, अरे मगर
1: ओ, अब बना तो सही। ले पकड़ कोयला पकड़।
2: ठीक है।
1: अब बना।
0: मंगला चित्र बनाने जा ही रही थी कि उधर से गुजरते हुए माली की निगाह उन पर पड़ गई। माली ने डांटा, तुमने दीवार खराब कर दी, और फिर राजा साहब से शिकायत करने चला गया। इस पर मंगला बोली,
2: भाई अब क्या होगा, माली गया है शिकायत करने, मामा देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे।
1: तू चिंता मत कर। अच्छा चल, हम दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं।
2: ठीक है।
1: चल चल चल चल, चल।
2: हाँ,
1: हम
2: हाँ,
1: दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं।
3: कोच्चू और मंगला झाड़ियों के पीछे छिप गए और तभी माली राजा साहब को लिए हुए वहां पहुंचा।
4: अरे ये तो घोड़े का हूबहू चित्र बना दिया है कोच्चू ने। देखो तो सही, पूंछ उठाए घोड़ा कैसा भाग रहा है।
0: माली परेशान, राजा तो चित्र की तारीफ कर रहे हैं, मंदिर की दीवार खराब कर दी, इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहे।
4: कहाँ है कोच्चू और मंगला है?
5: मालिक, मैं अभी तो उन्हें छोड़कर गया था, आप उन पर नाराज होंगे ये सोचकर कहीं इधर उधर भाग गए होंगे।

राजा साहब ने पहचान लिया कि कोच्चू में चित्रकार बनने की क्षमता है। राजा साहब स्वयं एक अच्छे चित्रकार थे, विद्या प्रेमी थे। उन्होंने कोच्चू को प्रोत्साहित किया, उसे चित्र बनाना सिखाने लगे। लेकिन कोच्चू के पिता नीलकांतन भट्टा तिरपड़ को यह पसंद नहीं था कि उनका बड़ा बेटा कोच्चू बड़ा होकर एक चित्रकार बने। नीलकांतन वेदों के ज्ञाता, संस्कृत के विद्वान थे। वो चाहते थे कि कोच्चू उनकी तरह संस्कृत का विद्वान बने। केरल की अपनी एक प्रथा रही है कि शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के घर रहने के लिए नहीं जाती, बल्कि दूल्हा ही दुल्हन के परिवार में रहने के लिए आता है। नीलकांतन भी अंबाबाई के भाई राजा साहब के यहां रहते थे। उन्हें राजा साहब की बात माननी पड़ी, लेकिन ये भी तय रहा कि कोच्चू संस्कृत भी सीखेंगे। कोच्चू अपने पिता से संस्कृत भी सीखने लगे, मां से संगीत और मामा राजा साहब से चित्रकला। इस प्रकार साहित्य, कला और संस्कृति के धार्मिक और कलात्मक परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ। तरुणावस्था आते आते वो सभी में सिद्धहस्त होते चले गए। तभी त्रावणकोर के राजा का

0: बहन अम्बा
1: जी,
0: त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया है। उन्होंने कहला भेजा है कि घराने में कोई अच्छा सा विवाह योग्य युवक हो तो उसे भी साथ लेते आए।
1: फिर
0: क्या, राजा का बुलावा आया है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। सोचता हूँ कोच्चू को साथ ले जाऊं। यहाँ वो जो कुछ लिख पढ़ सकता था, जितना कुछ सीख सकता था
1: जी,
0: सीख ही चुका है। आगे सीखने के लिए उसका त्रिवेंद्रम जाना ही ठीक रहेगा।
1: तो फिर
0: तुम कहो तो उसे त्रिवेंद्रम ले जाऊं?
1: ले जाओ, मैं क्या मना करती हूँ। हाँ, उसके पिताजी से भी पूछ लो।

पिता नीलकांतन ने भी स्वीकृति दे दी। भला उन्हें क्या आपत्ति होती। त्रिवेंद्रम जाकर कोच्चू आगे ही बढ़ेगा, वहां के विद्वानों, गुणियों और कलाकारों से उच्च शिक्षा पाएगा, और सबसे बड़ी बात कि त्रिवेंद्रम के राजा का उसे आश्रय मिलेगा। और इस प्रकार कोच्चू त्रिवेंद्रम के राज दरबार में पहुंच गए।

0: राजा राज वर्मा, हमारा संदेशा पाकर आप आए, अच्छा किया जो आप आए। आपका स्वागत है। आपके यहां सब कुशल क्षेम तो है?
1: जी हाँ, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है।
0: आपके साथ ये नवयुवक कौन है?
1: महाराज, ये रवि है, मेरी बहन अंबाबाई और बहनोई, विद्वान नीलकांतन भट्टा तिरुपद का बड़ा बेटा। इसे भी मैं आपके दर्शनों के लिए अपने साथ ले आया हूँ। इसने तमिल और संस्कृत का अध्ययन किया है महाराज। गायन, वादन और कथकली में निपुण है और चित्रकला का अभ्यास करता है।
0: अरे, तब तो ये नवयुवक बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है।
1: महाराज, इसमें आगे बढ़ने की बहुत ललक है, लेकिन हम किलिमानूर में रहकर इसे जितना सिखा सकते थे उतना सिखा दिया है। आगे की शिक्षा तो उसे आपके आश्रय में ही मिल सकती है।
0: इसमें क्या परेशानी है? इसकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था हम यहीं करा देंगे। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े गुणी और ज्ञानी विद्वान हैं। राज चित्रकार रामास्वामी नायकर हैं। हम इसे चित्रकला की शिक्षा रामास्वामी नायकर से दिला देंगे।
1: आप ऐसी व्यवस्था करा दें तो बड़ी कृपा होगी।
0: आप निश्चिंत हो जाएं। समझ दीजिए कि इसकी व्यवस्था हो गई।
2: राजा तिरुनाल ने दरबार में उपस्थित राज चित्रकार रामास्वामी नायकर को संबोधित करते हुए कहा,
0: नायकर जी, आज से ये नवयुवक आपका शिष्य है। इसे आप राजकीय रंगशाला में चित्रकला की उच्च शिक्षा दें। ये हमारे राजा राज वर्मा का भांजा है और होनहार नवयुवक है, और अब ये हमारे संरक्षण में है।
3: रामास्वामी नायकर ने देखा कि नव युवक का हाथ तो उनसे भी कहीं अधिक सधा हुआ है। ऐसे में इसे कुछ सिखाने का मतलब होगा अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। इसलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं सिखाया, बल्कि उसे डांटता फटकारता रहा। तिरुनाल को पता

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक समय वर्तमान सकाळ 6टा हेबाकु जाउची हिंदी रे संवाद रिले कर प्रचार करछु आकाशवाणी दिल्ली रो
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर

आज से दो दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। ट्रंप के अनुसार दोनों पायलटों को बचा लिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने विदेशी सेनाओं से होर्मुज जलडमरू मध्य छोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर विदेशी सेनाएं अपनी मानवीय त्रुटियों, दुर्घटनाओं या गोलीबारी में फंसने के कारण लगातार संकट में रहेंगी। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर ही सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

डॉक्टर एस जयशंकरः अद्यारभ्य बुल्गेरिया फिनलैंड देशयो द्विदिवसीय आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। विदेश मन्त्रालयेनोक्तं यत् डॉक्टर जयशंकरः बुल्गेरिया देशस्य स्वीय यात्रावधौ तत्रत्य नेतृत्वेन सह मेलनं करिष्यति तथा स्व समकक्षेण सह चर्चां विधास्यति। इति वार्ताः।

आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक एबे सुनंतु आज प्रचारित हेबागु थिबा कार्यक्रम संपर्क रे सूचना आमर स्वास्थ्य सुनिबे सकाळ 7:10 रे एथरे विषय रहिछे मानसिक रोगी प्रति परिवार लोकंक दायित्व ओ कर्तव्य आलोचना करिबे डाक्टर नीला माधव रथ सकाळ 7:25 रे शुभ सकाळ मो पसंद सकाळ 8:30 रे डायलिन लाइव चिटचार सकाळ 9:00 एवं संध्या 5:02 रे एथरे निर्धारित विषय रे फोन कॉल्स माध्यम रे निजर मतामत रखिपारिबे।

हेलो है, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, ए सुंदर सकाळरे निसी तरफरु आपण मनकु बहुत बहुत शुभेच्छा, शुभ अभिनंदन एवं शुभकामना। आज होची बुधवार। आज आपण मनकर जहा जहा भी काम अछि से सब काम सफल हो, सब काम ठीक भाबरे आरंभ हे, ठीक भाबरे सरी जाउ। आपण सुस्थ रहंतु, निरोग रहंतु, आनंद रे रहंतु, आम सहित जोड़ी हेगी रही थांतु। ए सुंदर भावना भीतरे आरंभ करिबा शुभ सकाळ।

0: ये घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर करता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4,399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ

0: कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
4: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे PMEGP लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
3: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल

0: को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16 लाख नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था, हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
3: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
2: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
2: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 1,25,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Akashvani presents Morning News. गुड मॉर्निंग।

0: म्यूजिकल योर्स आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे चली छे डायलिन लाइव चेचार शो। आज रो टॉपिक रही छे वर्तमान जो खरा गरम गुड़गुड़ी ए समय गोटे थंडा जगह को बुले जीवा पई आपन को जदि सुजोग मिलिबा ताहाले आपन को जगह चूज करबे। सीधा सड़क भाव में आमको जन पारे आम टेलीफोन नंबर 0671203-03153। देखिबा आउ जने कलर को हेलो
1: असल पंडा मधुपटना कटक
0: आपन को स्वागत जनउछे। कोन कहबे आज रो टॉपिक संपर्क करे
1: भक्ति रो डोरी रे बांधी बिरे तोते तू तो मोर मयूर चंद्रिका जीवन रो एही अमा अंधकारे तू तो मोर आलोक बर्तिका मु पुरी शहर को जीवा को चाहिबि प्रभु श्री जगन्नाथ को दर्शन करिबा को चाहिबि आनंद बाजार भिड़ रे अभड़ा खाइबा को चाहिबि एवं बेलाभूमि समुद्र बेलाभूमि रे शांत भाव रे बसिकी देउ गणिबि।
0: वाह एत्ते एत्ते भावना आपन को मन भीतर अछि सुंदर भाव रे आपन महाप्रभु को पाख को हम को नै गले एंति गोड़े सुजोग आपन को खूब शीघ्र मिलु आपन जानत जगन्नाथ को दर्शन करके आसंत जहां जहां मन रे अछि।
1: आज्ञा अतीत रे अनेक थर प्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर को जाइछि आपन विश्वास करिवेनि सत कथा कहूछि एमिति भी समय चला मु प्रतिदिन पुरी जाउथिली।
0: अच्छा वाह बढ़िया
1: एबे टिके जाई परुने किंतु सेते बेले प्रतिदिन पुरी जाउथिली मोर प्रथम काम होला पुरी जीवी आउ जगन्नाथ को दर्शन करिवी तांका आनंद बाजार रे अबड़ा खाइबी मंदिर रे रहिबी उपरवाला को समुद्र बेला भूमि की जीवी।
0: बहुत बढ़िया सुंदर कथा एमती भावना रे आपण बुड़ी रहुथिले पूर्वरु एबे टिके कम जाउछंती जा हो आपणकर सेमती भावना रहिछि महाप्रभु को प्रति आपणकर श्रद्धा भक्ति रहिछि आपणको बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित शामिल हेले सकल सकल टेलीफोन माध्यम रे
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद।

0: अरे जा जा
1: तोर मोर जुड़ जाऊड़ी पखर चलो
2: नारतनी
1: गज गमनी फूल बनी जा मोर घरणी।

0: करूं।
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर,
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे शोर।
0: हाँ जी यार, अरे

0: ସାଦେ ଶିଉଲି ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏଭଳି ଭାବରେ ଜାରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ। ରିଲି କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐतिहासिक अवसर देश की जनता द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जताए गए अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
3: आज माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी इसी तरीके से देश की सेवा करते रहे और देश का जो भविष्य बनाने का संकल्प उन्होंने दिया है, विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने दिया है, उस संकल्प में हम सभी 140 करोड़ देशवासी संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
1: गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में इस अवसर पर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली

दिल्ली में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच एआरएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में एआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका और संवाद तथा कूटनीति के प्रति समर्थन व्यक्त किया। घरेलू शेयर बाजारों में आज आधा प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 420 अंक बढ़कर 74,339 और निफ्टी 106 अंक बढ़कर 23,348 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ଡକ୍ଟରୀ ଶୁଣିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଏନର୍ଜି ମିଳେ ଏବଂ ଲାଇଫରେ କିଛି କରିକି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାହସ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଏ ଭିତରେ। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथी आपने तो सुंदर मतामत आम सहित शेयर करिछन्ती। तेणु साथी आपण डेरी न करिकि गोटे बजे 28 मिनिट हबाकु जाउछि गोटे 50 पर्यंत म आपणक सहित डायरेक्ट एसएमएस माध्यम रे कथा हे परिबी। एवं आज रे टॉपिक रहिछि पुस्तक संगीत ना सिनेमा कोटा आपणकर जीवन को अधिक प्रभावित करिछि एवं काहेकि निहाति भाबरे हमको एसएमएस करंतु

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है, देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण

0: और विकास के लिए काम किया है। इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
1: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, वे सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
2: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
0: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2169 करोड़ रुपये की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
4: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
4: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट है, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ NDA गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे

0: मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। ये अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
1: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को न आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री की टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि एलपीजी कनेक्शनों को पीएनजी कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
2: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उसमें क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं। इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जडमरु मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के 5वें बेड़े और कुवैत में अली अल सलैम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इजरायली बलों ने बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इजरायली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वाशिंगटन में हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
0: अफगानिस्तान के कुनार खोस्त और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ସିଲି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତକ୍ ସାଥି ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିବେ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ବିରତି ପରେ।
1: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
2: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
2: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
1: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश

0: है द टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: आम राज्य रे एबे स्वतंत्र सघन संशोधन एसआईआर कार्यक्रम आरंभ हो जाइछि। एथिपाई 30 मई 2026 रु 28 जून 2026 पर्यंत बूथ स्तरीय अधिकारी माने प्रत्येक घर को घर जाई प्रति निर्वाचकंकु दुईटी परिगणना फॉर्म देबे। फॉर्म गुडीकु voters.eci.gov.in वेबसाइट रु मध्य डाउनलोड करि परिबे। फॉर्म दुईटी पूरण करबा परे एहाकु बीएलएमक निकटरे दाखल करंतु एवं तांकठारु प्राप्ति स्वीकार ग्रहण करंतु। अधिक सूचना पाई वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 को कॉल करंतु किंबा वोटर सर्विस पोर्टल किंबा ईसीआई नेट आप रे बुक ए कॉल विथ बीएलओ सुविधार उपयोग करंतु। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ओडिसांग द्वारा जनहित रे जारी।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलवदास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
2: सुख एवं समृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू जी का।
2: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज।
1: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी असमा नाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
2: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से।
1: और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। तो विमलेश जी कल हमने चर्चा की थी जापान के चाय समारोह की
2: जी।
1: तो आज
2: आज अजीत जी जब चाय की बात कल हो ही गई है तो क्यों ना बात करें आज कॉफी की। लेकिन याद रखिए इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की
1: जी। विमलेश जी हम परंपराओं पर ही बात करेंगे
2: जी।
1: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चलें एक और महादेश अफ्रीका।
2: लेकिन बात तो हम कॉफी की कर रहे थे ना
1: जी। बिल्कुल आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के कॉफी समारोह की
2: जी।
1: इसे इथियोपियन कॉफी फेस्टिवल भी कहते हैं।
2: अजीत जी कॉफी की खोज भी तो इथियोपिया में ही हुई थी।
1: बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना जो बोले सो कुंडा खोले
2: जी।
1: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज कैसे हुई थी
2: जी। बताती हूँ श्रोताओं, लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार इथियोपिया के एक गांव में कुछ चरवाहे पास की घाटी में बकरियां चराने के लिए गए थे। उनमें कलड़ी नाम का एक चरवाहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं।
1: तो क्या हुआ फिर?
2: वो उन्हें ढूंढता हुआ जब घाटी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बकरियां एक विशेष पौधे के लाल फलों को खाने के बाद बहुत सक्रिय हो गई हैं। अजीत जी अब आप आगे बताइए ना।
1: बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा ना तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ
2: जी।
1: वो उन फलों को अपने धार्मिक अगुओं के पास ले गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फल को भूनकर एक पेय बनाया
2: जी।
1: और ऐसा कहते हैं कि इस पेय ने उन धार्मिक अगुओं को रात्रि प्रार्थना के समय जगे रहने में थोड़ी मदद की
2: जी।
1: तो यही पेय आगे चलकर कॉफी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये एक लोक कथा है।
2: लेकिन ये तथ्य है कि कॉफी की खोज इथियोपिया में ही हुई थी। तो श्रोताओं अब हम चर्चा करेंगे इथियोपिया के कॉफी समारोह की। इस समारोह को स्थानीय भाषा अम्हारिक में बुना कहा जाता है। जापान की तरह ही ये मात्र कॉफी पीने की ही प्रक्रिया नहीं है लेकिन ये सम्मान मित्रता और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है।
1: तो अब जानते हैं श्रोताओं कि ये समारोह होता कैसे। समारोह शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियां बिछाई जाती
2: जी।
1: हैं। फिर क्या होता है विमलेश?
2: सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
1: वाह वाह जी।
2: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।
1: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं कि भुनी हुई बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है
2: जी।
1: और उन्हें मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष मिट्टी के बर्तन को ज़ेवेना कहते हैं
2: जी।
1: फिर कॉफी परोसी जाती है।
2: खास बात यह है कि कॉफी तीन चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है
1: जो थोड़ी हल्की होती है। ये इस बात का संकेत है कि अब बातचीत की जा सकती है
2: जी।
1: इस दौरान लोग बातचीत करते हैं, रिश्ते तय होते हैं और यहाँ तक कि टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं।
2: और अंत में तीसरा प्याला दिया जाता है जो आशीष और

0: शांति का प्रतीक माना जाता है। बिना तीसरा प्याला पिए उठना अशिष्टता मानी जाती है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या पारंपरिक हल्के नाश्ते भी दिए जाते हैं।
1: तो श्रोताओ, इथियोपिया में कॉफी समारोह में किसी को आमंत्रित करना मित्रता और सम्मान का चिन्ह माना जाता है।
0: जी।
1: इथियोपिया के कॉफी समारोह में देश विदेश से भी लोग आते हैं और इथियोपियाई संस्कृति की भावना को समझते हैं। और हाँ, राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत कॉफी से करना इथियोपिया की परंपरा है।
0: जी हाँ श्रोताओ, तो कैसी लगी इथियोपिया की शानदार कॉफी समारोह की परंपरा, जरूर बताइएगा।
1: और अब आज का प्रश्न सुनिए, आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ,
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है हमको प्यारा।
0: ये कार्यक्रम गीत संगीत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत भूमि का गरिमामय उल्लेख मिलता है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति का आह्वान किया गया है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी है तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे, संगीतकार

हरभजन सिंह, निर्माण सहयोग कुसुमलता, मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत तू है हमको प्यारा, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है पेरियार नदी।
1: इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की पेरियार नदी, उसकी पारिस्थितिकी और जनजीवन में उसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम में दक्षिण भारत के लोक संगीत और संस्कृति की भी झलक मिलती है।

केरल प्रदेश में थेकड़ी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें और इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी पेरियार झील।

0: ओर का इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पेरियार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहां बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर ये अपने हाथियों और तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहां सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहां घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।
1: लक्ष्मी लक्ष्मी वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
2: अरे
1: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
2: हाँ हाँ सुनीता, मगर मगर

0: जरा संभल कर चोट मत खा जाना।
1: अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना। देखो झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़ियां कितनी सुंदर लग रही हैं। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ। हाँ
0: हाँ हाँ सुनीता, ये लो, ये पकड़ो पकड़ो।
1: क्लिक। लक्ष्मी, इस पेरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं?
0: देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मुलायार पर बांध बनाया गया।
1: अच्छा।
0: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं। और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया।
1: ओ, तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय झील में डूब गए फिर धीरे धीरे सूख गए।
0: हाँ, और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है।
1: हाँ, ये तो दिख ही रहा है।

0: वैसे ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया?
1: इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो, हम उनसे पूछते हैं। वो यहीं के कर्मचारी लगते हैं।
0: हाँ, चलो
1: चलो। एक्सक्यूज मी।
2: जी हाँ, कहिए।
1: जी, मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता।
0: नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे?
0: हाँ
2: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।
1: जी,
2: वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ।
1: जी,
0: बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कमल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बनी?
2: देखिए, 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया था और 1978 में इसे केरल का एकमात्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
0: अच्छा कमल जी, क्या इस टाइगर रिजर्व को पेरियार नाम पेरियार नदी की वजह से ही दिया गया है?
2: असल में सुनीता जी, इस जगह की खूबसूरती, यहाँ का वन्य जीवन, ये सब पेरियार नदी की बदौलत ही है।
0: ओह,

ये जगह उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहां खूब बारिश होती है। और इसीलिए यहां के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहां प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं।

0: कमल जी, वैसे पेरियार नदी तमिलनाडु से निकलती है ना?
1: हाँ सुनीता, ये निकलती तो तमिलनाडु से ही है, मगर इसका कोई 60 किलोमीटर का हिस्सा ही तमिलनाडु में पड़ता है
2: जी।
0: अच्छा,
1: बाकी करीब 240 किलोमीटर की यात्रा ये केरल के अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है। ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है।
2: बिल्कुल ठीक कहा आपने,
1: क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है।
0: अच्छा, तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
1: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
2: मैंने

0: देखिए काफी पहले। वाह क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी।
1: अच्छा।
0: और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।
1: अच्छा।

0: अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर होता है।
1: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी।
0: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा, वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
2: यही रेस्ट हाउस में।
0: रेस्ट हाउस में?
2: जी।
0: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए कल मिलते हैं। ओके
0: ओके,
1: बाय
0: बाय।
1: ओके।

0: सुनीता, 8 तो बजने वाले हैं, कमल जी आते ही होंगे।
1: हां,
0: अरे लगता है कमल जी आ गए।
2: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
0: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग।
4: आइए आइए, स्वागत है आपका।
2: तो भाई चलिए, मेरा ख्याल है यही लॉन में बैठते हैं।
0: जी
2: आइए, तशरीफ रखिए। हाँ हाँ, तो सुनीता जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में?
4: कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।
2: ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्ष्मी जी दें, क्योंकि ये केरल की रहने वाली है।
0: हाँ, क्यों नहीं। कमल जी, बचपन तो मेरा केरल में बीता था, मगर बाद में मैं दिल्ली चली आई।
2: अच्छा।
0: मगर अक्सर केरल आना होता रहा, लेकिन हाँ, जैसा कि पिताजी कहते हैं, उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अद्भुत खूबसूरती हुआ करती थी ना, वो अब लुट चुकी है।
4: मतलब
0: ये कि इस नदी में इस कदर प्रदूषण बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।
2: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
4: अच्छा, अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में हैं, अब यहाँ से आगे ये नदी किन किन खास स्थानों से होकर जाती है?
2: देखिए, आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुँचती है।
4: वांडी पेरियार?
2: हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है, जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है, और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
4: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
2: हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडु नाम की जगह है
4: जी,
2: जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है।
4: अच्छा।
2: यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है।
4: ये केरल भी क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना?
0: यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान और रबर भी खूब उगाए जाते हैं।
2: हाँ, ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी। वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में पेरुमथुराई और कटप्पना नदियों से मिलते हुए ये इडुक्की पहुँचती है।
4: अच्छा।
2: और इडुक्की के बाद इसमें नेरियामंगलम के पास ईडा मलयार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है, और फिर ये नदी पेरियार बैराज से होते हुए भूथाथन केतु बांध में जाती है। पेरियार के आसपास की पहाड़ियों पर कई आदिवासी जनजातियां सदियों से रह रही हैं, जैसे मन्नन मलयालम, उर्ली, मुथवन, कादर वगैरह।

0: और इन सब का पालन पोषण भी आज तक पेरियार ने ही किया है।
1: हाँ, और अब ये आदिवासी मुनार, कट्टाबाना, इलेपारा और वाडी पेरियार की चाय, कॉफी, रबर रीक और इलायची वगैरह से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते हैं। हाँ।

मान्यता ये भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिरामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं।

पेरियार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। कहा जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस यहां आए थे और इस जगह को पवित्र किया था। लेकिन यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और मलयत्तूर की पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई करते हैं।

0: मलयत्तर और कलडी से होकर अलवाई पहुंचने के बाद पेरियार दो भागों में बट जाती है।
1: अच्छी।
0: पहली मंगल पूजा शाखा महिला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है
2: और दूसरी इलोर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी। भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियां तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं।
1: ओह, तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
0: जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने के मुहिम में लगे हुए हैं।
1: वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं।
2: तो करो ना सुनीता।
1: तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पेरियार से।
0: बिल्कुल।
3: नेक काम में भला देरी किस बात की, और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है, और अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें, आज से और अभी से। हम तो तैयार हैं, आप भी तैयार हैं ना?
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम पेरियार नदी। आशा है कि ये कार्यक्रम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन श्रोताओं, अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा समय भी समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।

0: पुओ मु कालीमो पुतुरा घर को जाई के आसी देखी कि आश्चर्य हेली कि से माने दिन न जाको एसी लगाउ छंती सब बेले वॉशिंग मशीन चलाउ छंती घरे दीदीटा फ्रिज अछि किंतु तारो बिजुली बिल जानिछो केते आसुछि जीरो मु पचेरिला रु पुतुरा कहिला
1: दादा सब से ऊपर वाला र दया माने सोलर पैनल र
0: मु भाबिली एबे तो लगैबा को ही पड़िबो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना जोड़ी हेबा पई विजिट करंतु pmsuryaghar.gov.in रे
2: हर घर सूर्य घर
3: आम राज्य रे एबे स्वतंत्र सघन संशोधन एसआईआर कार्यक्रम आरंभ हो जाइछि एथिपई 30 मे 2026 रु 28 जून 2026 पर्यंत बूथ स्तरीय अधिकारी माने प्रत्येक घर को घर जाई प्रति निर्वाचकंकु दुईटी परिगणना फॉर्म देबे फॉर्म गुडीकु voters.eci.gov.in वेबसाइट रु मध्य डाउनलोड करि परिबे फॉर्म दुईटी पूरण करबा परे एहाकु बीएलएमक निकटरे दाखल करंतु एवं तांकठारु प्राप्ति स्वीकार ग्रहण करंतु अधिक सूचना पाई वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 को कॉल करंतु किंबा वोटर सर्विस पोर्टल किंबा ईसीआई नेट आप रे बुक ए कॉल विथ बीएलओ सुविधा रो उपयोग करंतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी ओडिसा के द्वारा जनहित रे जारी परंपरा हेउछि हमरो मूल परिचय एहा केवल रीति नीति किंबा पर्व पर्वाणी नुहो बरं पीढ़ी पर पीढ़ी चली आसुथिबा मूल्यबोध संस्कार आ जीवनशैली गोटे अमूल्य धरोहर आम देश में भिन्न भिन्न भाषा पोशाक खाद्य पर्वपर्वाणी थिले मध्य समस्त को एकतार सूत्र में बांधि रखी आम परंपरा आज डिजिटल युग में आधुनिकता सह ताल मिले चलवा जरूरी किंतु साथ ही निज परंपरा आ संस्कृति को भूली जीवा उचित नुह

समय के चक्र में हर चीज बदलती रहती है। जिंदगी चार योगों की तरह चलती रहती है। कभी सत्य योग से सादगी दिल में उतर आती है, कभी कलयुग से थकान साथ चलती रहती है। सदी समय तो परिवर्तन हो ची, समय सहित आम चलुचु देखत ना आपण सहित कथा हो कत समय मत इशारा कले आपण विदा नबार विदाय तो नेबी निहाति भावरे, किंतु कथा दोची आपण सहित निहाति भावरे देखा हबो। तेणु सिउली अच्छी माने आम तो किसी खास कथा हेले खास गीत शुणिले, किंतु मु गले आपण को देखा करके जीवी आज जन साथी आपण सहित जोड़ी हेबे एवं तांको मध्ये आपण को पाखरे मु छाड़ी जाउची। सेमती आम सहित जोड़ी हेकि रही था शुणु था 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटको दिल से दिल तक कहूँ सिउली को मन रखी था आम सहित जोड़ी रही था। सो आज मत विदाय दिंतु, रहुची, नमस्कार।

हेलो हाय नमस्कार गुड आफ्टरनून ट्यून करिछंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो का डग दिल से दिल तक दिल से दिल तक रे ऐसे के पहुंच जाई छी आपनकर दिल का दोस्त ज्योति आपनक पाखरे आउ ऑलरेडी आरंभ होई गलानी शो सुरीला आफ्टरनून सुरीला आफ्टरनून रे आपनो बहुत सुंदर सुंदर गीत सुन पारिबे आउ ता सहित ढेर सारा मजा मस्ती ढेर सारा कथा हब ज्योति आपनक सहित अच्छा संग गोटे दिन थिला करेंट नथिला मो पाखरे माने बिजुली नथिला तो सेतेबेले ई खोला आकाश मुक्त पवन ई सबु ही आम जीवन रा आधार थिला किंतु गोटे समय आसिला जेतेबेले इलेक्ट्रिसिटी आम जीवन रा आधार बनी जाइछि आउ जदि केतेबेले केमती लाइन टिके कटी जाउछि ताहेले एकदम विरक्त लागुछि हमकु धीरे धीरे आमे इत्ते अभ्यस्त हेई गलेनी इत्ते अभ्यास रे पड़ी गलानी ए इलेक्ट्रिसिटी आमरो जे तारो इन्वेंशन भी आसीगला इन्वर्टर हेकि जेतेबेले लाइन जाउछि आमे इन्वर्टर रे यूज भी करुछि जहाद्वारा आमे लाइन ठारु दूर रे भी जाउने विभिन्न उपाय रे विभिन्न प्रकार रे जिते शांति रे आमे रही परिबा जिते खुशी रे आमे रही परिबा आम जीवन शैली जिते सुंदर हेई परिबो से सबो पई चेष्टा आमे करूचे आउ ए इलेक्ट्रिसिटी आम जीवन पई बहुत जरूरी हेई पड़ेची डेली लाइफ रे आउ ए जो खरा चली जी जदि सेई भितरे टिके लाइन कटी जाउची ओहो जहा तो व्यस्त लागुची न कहिले भला

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, ट्यून करी शांति 100.4 आकाशवाणी एफएम ग्रीन बुकर एक दिल से दिल तक। आरंभ होई जाय छी शो डायल इन लाइव चिट चैट। डायल इन लाइव चिट चैट रे ज्योति अछि आपनक सहित ढेर सारा कथा हवा पई। तेबे आज रो प्रश्न रही छी जे घर सजाडबा बेले बा कोनोसी पुरुणा ठाकरु आपनकर किछि पुरुणा जिनिस मिल जाय छी कि पुरुणा स्मृति ज्योतिरे जड़ित ही रही छी। नंबर टी होछि 0671230315। ऑलरेडी आम पाखे गुड़ाए कल आसी पहुंचीगला, तेज फर्स्ट कलर को कनेक्ट करम सहित देखा किए कल कर आज टॉपिक विषय। हेलो
1: जितेपा, नमस्कार।
0: नमस्कार, किए कहते कौ कहते?
1: मु रेडियो लवर नारायण प्रधान, बी ब्रह्मपुर बुगुड़ा जिला गंजाम।
0: नारायण भाई कार्यक्रम को बहुत बहुत स्वागत।
1: धन्यवाद।
0: कौन कहे आज टॉपिक विषय?
1: देखु मुझे किसी जिन सजी करताए मु बहुत गुट मान सब आगे से चिठीपत दिवानिया चल था बहुत गुट चिठीपत पोस्ट कार्ड पाई थाए आते सब भूल टा थोड़ी थाए ठाक बही भितर जिते चेक कै कि बही खाता तर मोर 50 टाँह 100 टाँह 200 टाँह बेले बाहर जाए मन खुशी जाए
0: जाऊ पैसा पाई जाती आज जो चिठी गुड़ा पाती
1: बही पेज भितर रखी दिए पैसा आगे बहुत खुशी लगे से सांग मैंने सब मानते विभिन्न प्रकार सब चिट्ठी मैंने माँ का घटका माँ सब चिट्ठी दिखती लास्ट लिखा थी चिट्ठी पढ़ी आप 10 कार्ड अन्य पठाइबे से छुआ बेले आम पुणी 10 पोस्ट कार्ड आणबू पुणी आम लिखिकी पठेबू एम लिखी।
0: अच्छा, से चली बहुत सुंदर कथा गोटे जानवा पाइली मु तेज बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित जोड़ी ये सुंदर कथ कही
1: नमस्कार।
0: हाँ, पुराणा दिन जिन मिल जाए से भारी मजा लगे खुशी लगे पुराणा पुराणा कथा कि मन पड़ जाए। तेज नारायण भाई तो फोन करते कहले चिठी पत्र मिल जाए बाकी किसी टंका भी से रखी भूली जाती से गुडाक भी पाई भारी खुशी। तेज नेक्स्ट कल किए कर देखी ना। हेलो,
2: अशोक पंडा मधुपाटना कटक।
0: आज्ञा, कार्यक्रम को बहुत बहुत स्वागत।
2: तुरिला आफ्टरनून रे विद्युत कारीगर मानक विषय रे कोई थिवारु आपन को धन्यवाद।
0: धन्यवाद, अपन कार्यक्रम सुनु छंती।
2: मोर गोटे कलम जड़े मत गिफ्ट कर दला। से कलम रो विशेषत्व होची कलम उपरे सुनेली कलर रे मो ना लेखाई दला।
0: अच्छा,
2: से कलम टिकी मो बही ठाक रखी

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार किए कहते कौट कौन
1: हाँ मु रंजन कुमार सेठी कह कटक रु दौड़ साहि
0: कार्यक्रम को बहुत बहुत स्वागत
1: आज्ञा
0: कौन कह टॉपिक विषय
1: हाँ टॉपिक विषय कह पूर्व मुझे प्रथम से दिवाकर भाई अच्छी अच्छी आपण बड़ फैन टी आप जोड़ी हमें सब मुझे प्रथम धन्यवाद दूसरी जो नंबर टा पाइल
0: अच्छा आपण आज फर्स्ट कॉल कर
1: आज्ञा मुझे प्रथम कॉल कर
0: कार्यक्रम को बहुत बहुत स्वागत
1: धन्यवाद दुकान पाखे बस मो दुकान अच्छी मुझे शुणे मोर प्रथम स्मृति है मुझे खेले प्रथम कथा खेलाड़ी आमर मुझे खेले छाड़ी आसिक कोड़े वर्ष है जो सांग खेल आम सब कोड़े वर्ष देखा देखी ना जो आम टूर्नामेंट मझे नेशनल होता है जूनियर नेशनल है कटक आम सार समस्त डक समस्त पाइली मानने कोड़े वर्ष सांग सब देखा पुणे एकजुट हेलु ग्रुप कलु से आज आज चलती
0: अच्छा किंतु हमर आज प्रश्न होची जे आपण घर सजाड़ा बेले किछि पुराना जिनस एमती हाथ रे लागी छि
1: हां पुराना जिनस हम से बाबांकर लीगल सर्टिफिकेट ला बडे
0: आज्ञा
1: बा मोटे गेले नेहर अवस्था 2008 रु लीगल सर्टिफिकेट बाहरतला कोड पाउन दिली अवस्था से 8 जे थिला पाउन दिली एई 5 दिन हबो मोडा डॉक्यूमेंट खुस रे जे हमर वोटर आईडी चली छि ओ एसआर चली छि
0: डेडिकेशन को मानने को पड़ो बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित जोड़ी होम सहित कथे मानते धर्ज धरी कल कर बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम शुणु था भल पाइबा दौ था बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद तेबे एमती नुआ नुआ साथी आम सहित जोड़ी होती तेबे नंबर टी हूँ 0671230315 तेबे नेक्स्ट कॉल नहीं नवा कॉल टी कटी जाइए किसी कथा नहीं आउ थे निहाती।

मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

कैलाश पर्वत पर शिवजी के विश्राम स्थल शीतल मंद सुगंधित पयार देने वाले बरगद के नीचे शिव तथा पार्वती विराजमान हैं। पार्वती श्री रामचंद्र के ब्रह्म होने के संबंध में अपनी जिज्ञासा प्रकट करती हैं, वो कारण जानने की जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करते हैं। श्री राम के अवतार की कथा, उनका उदार बालचरित, जनक सुता से विवाह तथा ये जानने की कि किस दोष के कारण उन्हें राज्य छोड़ना पड़ा, राम के वनवास, रावण वध तथा उस प्रकरण की अन्य लीलाओं के अतिरिक्त वो ये भी जानना चाहती हैं कि वो कौन सा तत्व है जिसके अनुभूति में ऋषि मुनि निमग्न रहते हैं। भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का रहस्य क्या है? इन ढेर सारे प्रश्नों द्वारा प्रकट जिज्ञासा के अतिरिक्त वो सभी तथ्य भी जानना चाहती हैं जो अनपूछे रह गए हों। पार्वती के सहज निष्कपट प्रश्न सुन महादेव आनंद विभोर हो गए। श्री राम की प्रीति तथा भक्ति से उनका शरीर पुलकित हो गया और आंखों में प्रेमाश्रु उमड़ आए।

0: कठोर कदम उठाए, सीमा पार आतंकवाद के कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की और ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पाकिस्तान के उन क्षेत्रों को भी टारगेट किया जो पहले अकल्पनीय थे और पाकिस्तान के साथ दशकों पहले किए गए अन्यायपूर्ण सिंधु जल समझौते को भी निलंबित स्थिति में रखा गया।
1: श्री वैष्णव अवदत् यत् अद्य मंत्रिमंडलेन अहमदाबाद मेट्रो फेज 2A इत्यस्य विस्ताराय 179,200,000,000,000 रूप्यकाणां व्ययः स्वीकृतः। सः अवदत् यत् अस्मिन् 6 किलोमीटर सुदीर्घः मेट्रो मार्गः 5 स्थानकैः युक्तः अस्ति। मंत्री अवदत् यत् द्वितीय क चरणस्य कार्यान्वयनेन अहमदाबाद गांधीनगरयोः मध्ये 70 किलोमीटर मितं यावत् सक्रियं मेट्रो रेल जालं भविष्यति।
0: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
1: केन्द्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ईंधन मंत्री हरदीप सिंह पुरी वर्यः अद्य अवदत् यत् देशे संकुचित प्राकृतिक ईंधनस्य CNG इत्यस्य अभावः नास्ति। सः अवदत् यत् सर्वकारः गृहेषु पाइप्ड नेचुरल गैस PNG इत्यस्य आपूर्तिं विस्तारयितुं तथा च LPG सम्पर्कान् PNG सम्पर्करूपेण परिवर्तयितुं प्रयत्नाः प्रचलन्ति।
2: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उसपे क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना CNG की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट LPG के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू PNG कनेक्शन।
1: अफगानिस्तान देशस्य कुनार खोस्त पत्तिका इत्येतेषु प्रान्तेषु पाकिस्तानी सैन्य वायु आक्रमणे न्यूनातिन्यूनं 13 जनाः मृताः, तेषु 11 बालकाः आसन्। एकस्मिन् वक्तव्ये तालिबान पक्षस्य प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद इत्यनेन आक्रमणस्य निन्दां कृत्वा नागरिक गृहाणि लक्ष्यीकृत्य आक्रमणं ह्यः रात्रौ अभवत् इति उक्तम्। सः अवदत् यत् पाकिस्तानस्य सेना पुनः एकदा अफगानिस्तान देशस्य वायुक्षेत्रस्य उल्लंघनं कृतम्, अपि च तत् मानवीय अपराधम् उक्तम्। पाकिस्तान अफगानिस्तान देशयोः मध्ये गत कतिपयेषु मासेषु वर्धमान द्वन्द्वस्य मध्ये एषा नवीनतमा घटना अभवत्, यत्र पुनः पुनः गोलिका प्रहारे नागरिकानां मृत्योः चिन्ता वर्धमाना अस्ति। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य पीवी सिंधु तन्वी शर्मा इत्येतयोः युगलं सिडनी नगरे महिला एकल क्रीडायाः द्वितीये चक्रे प्रविष्टम्। इति वार्ताः।

मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। ये आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले

0: दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।
1: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
2: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
2: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं
1: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज केवल खबर पूरी खबर।

Musically yours, 100.4 Akashwani FM Rainbow Connect, Dil Se Dil Tak. सो फ्रेंड्स लाइव फोन इन कार्यक्रम संपर्क में एक विशेष सूचना आसंता 13 तारीख शनिवार आकाशवाणी कटक केन्द्र तरफ पूर्वाह्न 10:00 11:00 पर्यंत एक घंटा पाई एक विशेष फोन इन प्रश्नमंच कार्यक्रम सीधा प्रसारण करा जिवो एथिरे विषय रही सुस्थ वयोवृद्धि सह योगाभ्यास कार्यक्रम विशेषज्ञ भाव जोगदेवे योग प्रशिक्षिका मंजू मिश्र एवं योग प्रशिक्षक सुरेश कुमार महापात्र कार्यक्रम को संयोजना करिवे प्रज्ञा पारमिता साहू श्रोता बंधु माने एही विषय संपर्कित प्रश्न टेलीफोन नंबर 0671230-3146 एवं 0671230-3149 जरिया रे स्टूडियो रे उपस्थित थिबा विशेषज्ञ को सीधा सलक प्रश्न पचारी उत्तर पाई परिबे सूचना टी एतिकिरी शेष हला ट्यून करी छंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक किछि क्षण मध्यरे सुनि परिबे ओडियारी संवाद

म्यूजिकली योर्स 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक वर्तमान सुनंतु फीफा वर्ल्ड कप 2026 रो डेली अपडेट्स रिले करी प्रचार करूछु आकाशवाणी दिल्ली रु किछ क्षण मध्यरे

म्यूजिकली योर्स 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक. दिल से दिल तक रे आरंभ हो जाय छे शो संध्या सर. आउ आज संध्या सर रे ज्योति अछि आपनक सहित. संध्या सर रे आपन जणि परबे निजरा नियर एंड डियर वन्स को निजरा गुड विशेस. जदि निजर मन कथा निजर नियर एंड डियर वन्स पाखे पहुंचा चाहते आम केवल मध्यम हूं. आउ नंबर टी हूँ 8895254200 एवं एसएमएस करने नंबर टी हूँ 09495963210. तेब आमर श्रोता मैंने अलरेडी जोड़ी हाक आरंभ कर सारी प्रथम एसएमएस टी कर अविनाश मिश्रा भुवनेश्वर रो लिखिछन्ति गुड इवनिंग एंड नमस्कार मैडम आपनको मध्य वेरी गुड इवनिंग नमस्कार. देखिछन्ति मो भौनी गोलगो भाई कथा मोर बहुत मन पड़े. आमे दुई भाई भौनी आउ आम नना बो आउ आम हस खुशी परिवार रो अनेक अनेक कथा मोर सब बेले मन पड़े आउ बेले बेले मो बहुत कांदे. मो गोलगो भाई एबे ता सासु घरे अछि. मोर अनेक अनेक स्नेह और आशीर्वाद मो गुलगु भाई पाई. जय जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ. बहुत सुंदर एसएमएस करिछंती मने पकौछंती निजर पिला दिन को निजर खुशी समय को. अविनाश मिश्र मेसेज करिथिले भुवनेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित जोड़ी थवर आपणकर इमोशनल एसएमएस देखि बहुत माने जेतिके खुशी लगुच से व्यस्त लगुच मन भितर के खोजुंच तेब पहुंचुची आपणों पर सुंदर गीताटी आम तरफ रो.

तुम्हारी मुस्कान की आदत सी हो गई है, तुम्हारी बातों से मोहब्बत सी हो गई है, एक पल भी दूर रहना मुश्किल लगता है। शायद हमें तुमसे इश्क सी हो गई है। ट्यून करी चंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक, दिल से दिल तक। दिल से दिल तक रे आपणकर दिल का दोस्त ज्योति अच्छे आपणक सहित आज इवनिंग रे। अच्छा गीता सहित आपणकर तो बहुत सुंदर संपर्क आपणकर नहीं तो

मोहब्बत वो नहीं जो लफ्जों में बयां हो जाए, मोहब्बत वो नहीं जो लफ्जों में बयां हो जाए, मोहब्बत वो है जो खामोशी में भी समझ आ जाए। इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं अगला गाना।

0: ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଛନ୍ତି 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ଦିଲ୍ଲୀ ଦିଲ୍ ତକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ସମାଚାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ପରେ ଶୁଣିପାରିବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଟ୍ 9 ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ
1: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया कहा विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी सरकार ने वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी वे आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है हमारी दिशा सही है ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे
1: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है
2: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित

0: भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के

0: कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन, एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
1: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर सही स्थान पर सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी पत्नी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
5: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
4: प्रधानमंत्री कौशल

0: आवास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5-7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियो पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला T20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर,

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi assures aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled, says Viksit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance lauds Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest serving elected Prime Minister. Union Cabinet approves second phase of Ahmedabad Metro Rail project. Also gives nod to infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. Government approves 96 companies under third round of PLI scheme for textiles, nearly 13,000 crore rupees investment committed. Defence Ministry to procure 20 advanced jammers for Navy ships to enhance operational safety. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to second round of women's singles event at Australian Open. Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, development also takes place at a rapid pace. He said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
2: भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नियत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। NDA सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time.
2: 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल पुथल से भरे हुए थे। इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है। मैं आज देश की महान जनता को भी नमन करता हूँ, जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूँ।
1: Mr. Modi said every citizen of the country is filled with the dream of a Viksit Bharat, and this dream is no longer limited to any single individual, government or political party. He emphasized that the government's economic and structural reforms are a product of ideological conviction rather than political compulsion.
2: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा। देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है और इस सपने की

0: होए होए दुख भर दिन भीतर भैया
1: काली मा पुतुरा घर को जाई के आसीली देखी कि आश्चर्य हेली कि से माने दिनो जाको एसी लगाउ छंती सब बेले वॉशिंग मशीन चलाउ छंती घरे दीदीटा फ्रिज अछि किंतु तारो बिजुली बिल जानिछो केते आसुछि जीरो मु पचेरिला रु पुतुरा कहिला
2: दादा सब से ऊपर वाला रा दया माने सोलर पैनल रा
1: मु भाबिली एबे तो लगाइबा कुही पड़िबो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना जोडी हेबा पई विजिट करंतु pmsuryaghar.gov.in रे।

नेक्स्ट एसएमएस टी करिछंती कुनी एवं लिखिछंती आज मो सांगर बर्थडे से गोटे गीत डेडिकेट करने को चाहूंती सांगंक नाम होचे आयशा आयशा आम तरफ आपणको हैप्पी बेलो बर्थडे एवं लिखिछंती जे से जने ननुड़िया बेंगलोर तांकर घर हिंदी फिल्म हीरो नंबर वन रु शुणा चाहते गीतटी एवं कुनी एसएमएस करिछंती केउंझर रु पहुंचुची आपणको डेडिकेटेड सॉन्ग आपणको सांगंक पाखरे

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेल लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत हो गए। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली NCR क्षेत्र में अगले 3 दिनों में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की आशंका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को हराया जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ट्यून करी छंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक।
4: ଭାରତର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସର୍ବାଧିକ ଦିନ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରି

सुनिश्चिंत्य आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक कार्यक्रम चली भक्ति संगीतर अर्घ्य थाली आज सकाल आपंट साथी स्मृति को शंखक्षेत्र पुरी अत्यंत पवित्र स्थान हिंदू धर्मावलंबी मैंने पुरी में पवित्र पंचतीर्थ में बुड़ पकईले पुरी को करिथिबा तीर्थयात्रा सफल हुए बोली विश्वास रखती बंधु एही पंचटी तीर्थ बा पंचतीर्थ हेउछि जलाश्रय जहां इंद्रद्युम्न पुष्करिणी रोहिणी कुंड मार्कंडेय पुष्करिणी श्वेतगंगा पुष्करिणी एवं महोदधि एही पंच पुष्करिणी रे बुड़ पकई महाप्रभु श्रीजगन्नाथ दर्शन कले सब पापताप भगवान हरि नियंती विश्वास रही भक्त मानकर कथा विषय आगको किंतु समय वर्तमान आउ एक सुंदर भक्ति गीतर

सुनिश्चित भक्ति संगीत कार्यक्रम अर्घ्य थाली केवल मात्र आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक आज सकल रे अपन माने सुनिश्चित अपन का साथी स्मृति को तबे ई पंच पुष्करणी जहाको पंच तीर्थ बोली मध्य कहा जाय छि ता मध्य रे मार्कंडेय पुष्करणी अन्यतम पुरी तीर्थ भ्रमणर आद्य स्थल भाबे ई मार्कंडेय पुष्करणी जणा 4 acre व्यापी पुष्करणी सह मार्कंडेश्वर मंदिर अवस्थित यह शिवंकर अति पुरातन मंदिर भाव में प्रसिद्ध से भली नीलाचल धाम दक्षिण में अवस्थित श्वेतगंगा पुष्करणी विष्णु मत्स्य अवतार एवं राजा श्वेतंकर मूर्ति पुष्करणी कूल में अवस्थित यह पंच पुष्करणी अन्यतम तबे श्रीक्षेत्रर समुद्र को महोदधी भली कहा जाय थाय ब्रह्मपुराण स्कंद पुराण वामदेव संहिता कपिल संहिता आदि ग्रंथ मानंकरे महोदधीर महात्म्य विषय उल्लेख अछि। एही सागर रे विष्णुंकर प्रथम अवतार अर्थात मत्स्य अवतार

तेबे महाप्रभु जगन्नाथ आम जीवन रे शांति सुख एवं समृद्धि भरि दियंतु समस्तंकर मंगल हेउ समस्तंकर जीवन को आलोकित करंतु एई कामना सह शेष करूछु आजर भक्ति संगीतर कार्यक्रम अर्घ्य थाळी को सुनिछन्ति आपण माने आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक।

म्यूजिकल योर्स आकाशवाणी एफएम रेनबो का हर नया दिन आपके जीवन में सफलता और खुशियां लेकर आए। जी हाँ दोस्तों, नई सुबह की नई किरणें, नई उम्मीदें और ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा लेकर हाजिर है आपका अपना मॉर्निंग शो सुबह।

सा करो और मैं हूं आपकी दोस्त हम सफर हो स्मृति और अगले कुछ पलों तक हम साथ साथ करेंगे इस खूबसूरत सुबह का स्वागत। सो समस्तंक गुड मॉर्निंग जो माने वर्तमान एफएम रेनबो को ट्यून करी छंदी सकल सकल अरे बाबा निद त भांगी सारी बणी ना सो सकल टको आउ टिके ऊर्जा मय माने पॉजिटिव करियो पे एनर्जाइज्ड करबा पई अपन माने जदी एफएम रेनबो को सुनि छंदी ताहाले अपन मानंकर पूरा पूरी दिन पॉजिटिवली ही जीव बहुत ही भल रही कारण म्यूजिक इज थेरेपी यार एंड जदि सकाल सकाल निजर मनपसंद गीत आपण मैंने शुणापी पाती ताहले तो दिन सारा बहुत ही फ्रेश फिल करिवे। सो आज सुंदर सकाल आपणक जनाऊँ ढेर सारा शुभेच्छा एवं अभिनंदन जीवन प्रत्येक सकाल आपण मानी नहीं आसु गोटे नुआ सुजोग नुआ आरंभ यस सूर्यंक प्रथम किरण जेंती पृथ्वी को आलोकित करे सेमती आपणक जीवन मध्य सुख शांति एवं सफलतार आलोकरे भरी जाउ। ते सकल सकल गोटे कथा कहिबी सकालर सूर्य कहे उठ आग को बढ़ नुआ स्वप्न को ने जीवन रे आगे चलो बस एफएम रेनबो एतिकी ही कहिबो एंड कहिबो दिल से दिल तक आशी गोटे ब्यूटीफुल ट्रैक एंजॉय करंतु ए ब्यूटीफुल मॉर्निंग रे रही था स्मृति सहित एमती चिपकी की एफएम रेनबो कैटेगरी

तो ये गाना हाय हाय हाय जब भी सुनते हैं ना ये दिल चुरा ही लेता है दोस्तों। सुबह सुबह अगर आशा भोसले, मोहम्मद रफी और इस टाइप के गोल्डन वॉइस अगर सुनने को मिले गानों में तो क्या बात है। सुन रहे थे आप यादों की बारात फिल्म का ये ब्यूटीफुल सा गाना और एफएम रेनबो कटक में शो चल रहा है सुबह सकाळ। सो फ्रेंड्स चाकअप सहित जदि आपण माने हम शो को सुनिछंदि तबे ई सकाळटी आहुरी सुंदर हेइ जिवो जदि आपण आपणक मनपसंद गीत सुनिबे एवं ता सहित गोटे कथा मु आपण मानको कहिबी जे लाइफ रे सबुठारो बड शक्ति हेउची निजर सेल्फ कॉन्फिडेंस माने आत्मविश्वास। जे निज ऊपर विश्वास रखे ना से असंभव को मध्य संभव करि पारे। ताले चलंतु ना आज निज मन भितर से गोटे पॉजिटिव थॉट्स नेबा जे जहां भी सिचुएशन आसुना कहेंगे परिस्थिति आसुना कहेंगे निज मुहरे गोटे बिग स्माइल सब बेले आपण माने रखिबे। केबे भी नेगेटिव भावना आपणक मन भितर जमा भी आनिबेनी। ऑलवेज सकारात्मक चिंताधारा आई मीन पॉजिटिव थॉट नेके जदि दिनटी को आरंभ करंती ताले लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल हे जीव। ए जेमती ब्यूटीफुल ए सुंदर गीतटी आसी आपण मानक पाखकू शुणु था एफएम रेनबो कटक को यस 100.4 दिल तक।

तो दोस्तों आप सुन रहे थे अमित कुमार और एस जानकी जी की आवाज में वो फिर आएगी फिल्म का ये सुंदर सा गाना आओ सुनी छंदी आपण माने आकाश पाणी एफएम रेनबो कटक को ट्यून करी छंदी यस आपण मन को पाख को आमे पहुंच जो 100.4 फ्रीक्वेंसी रे एंड जो माने फ्रीक्वेंसी बाहर आमो को सुनी छंदी आई मीन नामर बहुत फ्रेंड्स छंदी जो माने की ओडिसा बाहर भी आमो को सुनी छंदी न्यूज ऑन एआईआर ऐप लाइव स्ट्रीमिंग रे आमो सहित कनेक्टेड छंदी सो आजर सकल रे आपण को साथी स्मृति रही छी आपण मन को पाखरे एंड सो चली छी शुभ सकाळ ओके सो मॉर्निंग हला माने समस्तंकर माने प्राय बहुत लोकंकर हैबिट थाय जे सकल सकल जदी टिके चा ही जांदा ना हाय हाय हाय पूरा दिन टा बनी जांदा ना कि माने अमर इंडियंस माने चा प्रेमी कहिया को गले अत्यक्ति हबनी बेसी चा सेल हुए बा तयारी हुए अमर इंडिया रे बोली गोटे गवेषण रु मध्य जणा पड़ी छी तो जदि चा पियो छथि किछ प्रॉब्लम नहीं किंतु चा को प्रॉपर तरीका रे पीबा दरकार अनेक लोक अछंती चा पीबा परे तुरंत पानी पी दियंती जोटा की जमा भी उचित नुह कारण विज्ञान एवं आयुर्वेद शास्त्र अनुजाई ए अभ्यास को अस्वास्थ्यकर बोली विवेचना करा जाय छि तेनु चा पूर्वरो किंबा परे पानी पीबा उचित कि नाही ए संपर्क रे किछटा धारणा मो आपण मानन को आज क्लियर करबी जे चा पीबा पूर्वरो पानी पीबा उचित कि नाही बा चा पीबा परे पानी पीबा उचित कि नाही ए विषय रे टिके कथा हवा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रही छि बहुत ही जानिबा टॉपिक रही छि से विषय रे कथा हवा को किंतु समय वर्तमान आ गोटे ब्यूटिफुल गीत आसची ब्यूटिफुल मॉर्निंग रे एंजॉय करथांतु आम सहित एमती रही थांतु चिपके के

जी हाँ दोस्तों, जब किसी की याद आती है तो सब कुछ बिराना लगता है, किसी भी भल लगे नी। मन जिते आनंदमय परिवेश मन भितर कौटि ना कौटि गोटे खटका लगे थाए जे हाय काश से मो पाखे था कि तो ये तो है दिल की बातें, और दिल की बातें तो हमेशा होती रहती है एफएम रेनबो कटक में, क्योंकि हमारा टैगलाइन ही है दिल से दिल तक। तेणु एफएम रेनबो कटक को जिते बड़े आपंट आज सुंदर सकाल सो चली शुभ सकाल स्मृति रही आपण सहित सो सकाल सकाल टिके हेल्थ टिप्स विषय भी जानवा दरकार, बिल्कुल, कारण हेल्थ अच्छी जदि वेल्थ अच्छी, आई मीन हेल्थ इज

हेल्थ जदि सुंदर स्वास्थ्य टी अछि आपनकर ताहाले आपन ई सुंदर जीवन को अनुभव करि परिबे एन्जॉय करि परिबे तेणु सतर्क रहिबा निहाति भावरे आवश्यक एंड निज शरीर को बोथ फिजिकल एंड मेंटल माइंड को ठीक रखिबा आवश्यक तो कथा होतलो चा पीबा पूर्वरो पानी पीबा उचित कि नाही चा पीबा पूर्वरो पानी पीबा स्वास्थ्य पई बहुत लाभदायक बोली कहा जाय छी जोटा कि आपनको अनेक लाभ दै थाय जेमति कि एसिडिटी बंद हेबा चार जो एसिडिक प्रकृति थाए तो सेही जिनिसटी जमा भी हबनी चा पी बन जदि पानी पीबा परे चा आपण पिउछन्ती खाली पेटरे चा पीबा द्वारा शरीर रे एसिड रो स्तर बढी जाय थाय तेनु 10-15 मिनट पूर्वरु जदि आपण गोटे ग्लास पानी पिउछन्ती ताहाले पेटरे एहा गोटे सुरक्षा स्तर रूपरे सृष्टि हेय थाय जोटा कि चा ता परे जदि आपण गरम चा पिउछन्ती सेटा एसिडिटी क्रिएट करिवनी बा आपणकर पेट जळापोडा हबनी जमा भी सेमती आउ गोटे कथा होची चारे टैनिन बोली गोटे पदार्थ थाए जोटा कि आपणकर दांत को हलदिया करि पारे पानी पीबा द्वारा प्रथमे आपणक दांत उपरे गोटे हाइड्रेट स्तर सृष्टि हुए जहा कि ए चार दाग को रोकिबारे साहाय्य करे अगुड़ी कथा होची हाइड्रेशन मेंटेन करिबा मध्य निहाती भावरे आवश्यक जदि आपण पूर्वरो पानी पिउछन्ती ताहले शरीर रे पानी रो अभाव को जो रोकी बारे साहाय्य करिथाय ए पानी माने आपण जदि पानी पी कि चा पिउछन्ती ताहले सेटा आपण को पई बहुत भल सेमती चा परे जदि आपण पानी पिउछन्ती सेटा ठीक ना भूल से विषय रे मु आपण को रिवील करबि निहाती भावरे बट फिलहाल वर्तमान चलन तो एन्जॉय करिबा गोटे ब्यूटीफुल ट्रैक आसछि आपण मनक पाख को सुनता आमको

किशोर कुमार जी की आवाज में सौतन फिल्म का ये सुंदर सा गाना जो कि जिंदगी को रिप्रेजेंट करता है कि जिंदगी बिल्कुल ऐसा ही है, प्यार का ही गीत है। अगर प्यार से अगर गीत गाओगे या प्यार से पॉजिटिवली अगर ये जिंदगी को लोगे तो ये जिंदगी भी प्यार से आपको सहलाएगी और खुशियां देगी। सो फ्रेंड्स, लाइफ रे जहाँ भी आसुना कहें कि स्मृति सबुबले कही था जे स्टे पॉजिटिव, सबुबले पॉजिटिव रहिबा ही दरकार। आम जमी भाभी थाउ से प्रकार एनर्जी ही आम चतुर्पार्श्वे आसी था आम लाइफ रे इम्पैक्ट पकई था। सो जदि आप पॉजिट भावुंत पॉजिटिविटी आट्राक्ट करेंगे, जदि आप नेगेटिव भावुंत नेगेटिविटी आट्राक्ट करेंगे। तबे कथा होतलो जे चा पीबा परे पानी पीबा ठीक ना नाही। चा परे जदि आपण तुरंत पानी पिउछन्ते सेटा आपणको स्वास्थ्य पय बहुत क्षतिकारक हे पारे। विशेषज्ञको मतरे एरो अनेक असुविधा रही छे, जेमति कि दांतर सेंसिटिविटी आसी जायथे, जेमति कि चा गरम हेथाय जेतेबेले आपण साधारणतः चा पीवा परे साधारणतः ठंडा पानी पी देउछन्ते बा नॉर्मल वाटर भी होना काहेकि पिउछन्ते पानी ठंडा थाय हठात तापमात्रा परिवर्तन आपणकर दांतर एनामल को क्षति पहुंचे परे, जहां फल आपण दांत झिमझिम होता है, तार सेंसिटिविटी लॉस होता है। हजम जनित समस्या मध्य देखा दे पारे। आयुर्वेदिक अनुसार, आयुर्वेदिक शास्त्र अनुसार किछि अत्यधिक गरम एवं तापरे किछि अत्यधिक ठंडा जदि आपण खाउछन्ति सेटा आपणक शरीरर जो टेम्परेचर रहिछि सेटाकु इम्बालांस करि दैथाय। गरम चा परे जदि आपण तुरंत पानी पिउछन्ति सेटा पीबा द्वारा आपणक पेटर तापमात्रा हठात भाबरे आपणक पेट किछि बुझि पारेनि सो हठात भाबरे ह्रास पाइथाय, जोटा कि आपणकर हजम प्रक्रियाकु मंथर करि दैथाय एवं आपणक भारी लगवा कि गैस लगवा भली मध्य समस्या सृष्टि हो पारे। सो बी केयरफुल, जेतेबेले भी आपण जदि चा अभ्यास रही सकाळु चा पियंतु नो प्रॉब्लम, बट तार 10-15 मिनिट पूर्वरु आपण गोटे ग्लास पानी पियंतु, देन तापरे आपण चा पियंतु, जोटा कि आपणक स्वास्थ्य पय बहुत भल हबो। चाय को एंजॉय करि परिबे, एफएम रेनबो को ता सहित एंजॉय करि परिबे एवं हेल्दी भाबरे एंजॉय करि परिबे।

सो माय फ्रेंड्स, सोनी चंदी आकाश वाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक समय वर्तमान हेबा पई जाउ छे सकाळ 8:00 हमर परवर्ती कार्यक्रम सुनि परिबे आकाशवाणी दिल्ली रो किछ समय मध्ये रे।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा है,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज। केवल खबर, पूरी खबर।
2: तुम नाम जब हृदय लिखिदेली प्रत्येक स्पंदन गीत होगला, तुम्हें जब हसीदेल थरी मो सारा दुनिया रंगीन होगला। कहजे प्रेम को बुझाप बड़ बड़ पुस्तक दरकार नहीं, केवल गोटे सत हृदय ही जथेष्ट। जेतेबेले कहार मेसेज आसिले मुहरे हस आसी जाए, जेतेबेले कहार अपेक्षार समय अटकी जाए सेठी, जेतेबेले कहार दुख अति निजर लगे, हाँ सेठु ही प्रेमर आरंभ। सो फिलहाल आपण माने सुनिछन्ति आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 फ्रिक्वेन्सी रे आमे पहुंचुछु आपण माननका पाखकु डायरेक्ट दिल से दिल तक। आज सकाळ रे आपण माने सुनिछन्ति आपणका साथी स्मृति को। समय वर्तमान 8:31 एंड साथे साथे आरंभ होई जायछि सो मॉर्निंग मेलोडी। सो चलंतु ना एही मॉर्निंग को आउ टिके मेलोडियस करिबा, किछि मेलोडियस गीत सहित एन्जॉय करंतु।

बिल्कुल दोस्तों, फिल माय दिल एंड दिल कुहे तुम्हें थाओ पाखरे सब रास्ता सहज लगे, तुम्हें हसी देले मो सकाळटा स्वर्ग परी लगे। फ्रेंड्स, प्रेम होची सबुठारो सुंदर मानवीय अनुभूति, सो प्रेम करंतु किंतु हृदयरो, संपर्क गढ़ंतु किंतु विश्वास रे, आउ हस थांतु कारण आपणंक हस कहार प्रेमर कारण हेइ पारे। आज सकाळ रे मु आपणंक आरजे स्मृति आपण माने सुनिछंती सो मॉर्निंग मेलोडी।

सुन छते आकाश पानी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक आज रो सकल रे आपण माने सुन छते आपण को साथ ही स्मृति को सो चली छी मॉर्निंग मेलोडी सो आज रे सुंदर सकल रे प्रेम रो मीठा कथा सह आरंभ करिबा आमर ए यात्रा माने आरंभ तो हे सरी छी आ ता सहित रही छी दुई जण बॉलीवुड अभिनेत्री कर आज हो छी जन्मदिन सो आज होची जून 9 तारीख बॉलीवुड स्टाइल आइकन सोनम कपूर एवं अभिनेत्री अमीषा पटेल कर आज होची जन्मदिन यस सोनम कपूर का जन्म 9 जून 1985 एवं अमीषा पटेल का जन्म 9 जून 1975 रे हेतिला सो प्रथमे कथा हवा स्टाइल आइकन फैशन क्वीन सोनम कपूर के विषय रे यस 1985 आजर दिन रे जून 9 तारीख रे जन्म नैथिले सोनम कपूर बॉलीवुड रो जने प्रसिद्ध अभिनेत्री अभिनेता अनिल कपूर को कन्या एवं से नीचे तांका प्रतिभा रे ही इंडस्ट्री रे तांकर निजर स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिसेंती बिल्कुल बहुत ही सुंदर सुंदर फिल्म से आपण मान को भेटी दे नजाकियत जो स्टाइल जो एक्टिंग रे से आपण मन को छुई सावरिया निर्जा रांजना एंड प्रेम रतन धन पायो यही बॉलीवुड फिल्म रे से चरित्र को देखी चलचित्र रे अभिनय दर्शक माने साउंटी प्रशंसा साउंटी दर्शकों मान तेबे सावरिया फिल्म थिला ही तांकर प्रथम डेब्यू फिल्म थिला सो फैशन रे निजस्व स्टाइल पई सोनम को अनेक फैशन डीवा बोली मध्य कहि थांती सो आज ही होची तांकर हैप्पी वाला बर्थडे तो चलंदो सावरिया फिल्म रो ब्यूटीफुल गीत सुनुची तांकर अभिनेता फिल्म रो गीत तांकर फर्स्ट डेब्यू फिल्म एंजॉय करंदो

Hey friends, welcome back. Tune karichanti Akashvani FM Rainbow Katak 100.4 Dil Se Dil Tak. Sunichanti enjoy karichanti morning melody soko melodious geeta sahita. Aja sagalare apananka saha jodi he jaichi apananka sathe smriti. So सोनम कपूर का कथा तो कहले आज तंकर हैप्पी बाला बर्थडे आउ जोनी सुंदरी अभिनेत्री तंक कथा केमती पासरी जीव अमीषा पटेल का र मध्य आज होची बर्थडे यस माय फ्रेंड्स 1975 रे आजर दिन रे जून 9 तारीख रे जन्म नेथिले अमीषा पटेल निजरा प्रथम डेब्यू फिल्म थिला कहो ना प्यार है जहाँ द्वारा से राता राती पूरा पूरे स्टार बनी जाई थी ले परे गदर एक प्रेम कथा चलचित्र रे सकीना भूमिका तंको घरे घरे परिचित करी दी थी ला वर्ष परे वर्ष मध्य से ही चरित्र को दर्शक के भूली पारी नहीं थी वर्तमान गदर टूर रे मध्य पूर्ण थरे दर्शक माने तंकर तंको भलो पाई छंदी तंको भलो पाईबा दे छंदी साउंड दे छंदी भलो पाईबा सो आज ए दुई अभिनेत्रींकर हैप्पी वाला बर्थडे मॉर्निंग मेलोडी पक्षरु जन्मदिन रे अनेक अनेक शुभेच्छा हैप्पी बर्थडे सोनम कपूर हैप्पी बर्थडे अमीषा पटेल सो चलंतु अमीषांकर ए डेब्यू फिल्म रो गीतटी एन्जॉय करिबा

0: FM Rainbow. Yes, my friends, sakala 9ta ta already heigalani and ta sathe sathe so madhya start heigalani most awaited so dial in live jothre ki smruti sahita apan mane FM Rainbow platform re vartaman live jodi hei parive amara dial in number ti prathame tipi rakhantu yaar 0671 katak code 2303153 avthare kahi rakuchi 0671 2303153 ei number re apan mane mo sahita direct kathai parive dial in live re तो आज आपणमानंक पाखकु स्मृति नेकी आसी गोटे इंटरेस्टिंग टॉपिक यस वर्तमान तो डिजिटल दुनिया वर्तमान आपणमाने जेतेबेले बाहर को जाउछन्ती जदि सपोज आपण पर्स घरे भूली जाउछन्ती बा आपणक पाखरे कैश नाही ताले आपणक मुंडरे टेंशन भी नाही काहेकि कहिले कारण वर्तमान डिजिटल पेमेंट रा जमाना सो आपण डिजिटल पेमेंट करूछन्ती जिनिस जहां भी आपणकर दरकारी जिनिस रहिछे ताकु नेकि आसुछन्ती आ हटहटा बा हैरान हबाकु पडुनी तबे आज स्मृति आपण मानंकु पचारुछि जे डिजिटल पेमेंट और कैश पेमेंट कोटा बेसी प्रिफर करंती आ काहे कि प्रिफर करंती से बिषयरे आपण माने मो सहित कथा हि परिबे 0671 2303153 रे ओके कहु कहु फोन रिंग हेबा तो ऑलरेडी स्टार्ट हे गलानी तबे सेठी मो गोटे कथा इठी आपण मानको कहबी जमा भी फोन बिजी रखंतोनी जो माने ऑलवेज सब बारे कॉल करछन टिके बिरति नियंतो देखियो हमर फर्स्ट कॉलर की अछंदी हेलो
1: जय जगन्नाथ नमस्कार
0: नमस्कार जय जगन्नाथ
1: रेडियो लवर नारायण प्रधान बी बरमपुर बुगुडागंज
0: नारायण भाई केमति अछंदी
1: हाँ बढ़िया अच्छी ठंडा ही आज खरारे आइसक्रीम बिक्री पानी पी दौ ठंडा पानी टी
0: हाँ
1: ठंडा धर दी
0: ए हे कला लगे तंटिका टे बस जाइए नहीं की अच्छा हो किंतु खरारे जेतेबेले भी बुलुछंती सेतेबेले संगे संगे आपण ठंडा पानी पियंतुनी टिके छाई रे बसंतो झाळ फळ पोछि सला परे टिके रिलैक्स हे सला परे देन ठंडा पानी पीबे हले ताले जाकी भलो हबो अच्छा कुहंतु डिजिटल आपण तो व्यापार करूछंती तो डिजिटल पेमेंट बा कैश पेमेंट कोटा को प्रिफर करंती आ काही की
1: मते वर्तमान डिजिटल पेमेंट ता भलो लागुची फोन पे जोडा की पैसा घर न खाउ भाई कोई आईसक्रीम खाइबा
0: अच्छा
1: तेणु मुझे फोन पे

0: सफर।
1: वेलकम बैक माय फ्रेंड्स, सुन छंदी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक आपण को साथी स्मृति को सुन छंदी ए सुंदर मॉर्निंग डे एंड सो चली छी डायल इन लाइव। सो डिजिटल पेमेंट और कैश पेमेंट कोटा को पसंद करते प्रिफर करते से विषय स्मृति पचारूची आज आपण को देखा फोन लाइन रे जने फ्रेंड आसगले किए अच्छा। हेलो
2: हेलो अपा नमस्कार।
1: नमस्कार, जय जगन्नाथ, किए कहते हैं?
2: आवाज को के लिए।
1: अच्छा आवाज, वेलकम कर छ एफएम फ्रेंड वो को आज भी लागी गला फोन ना। बढ़िया। अच्छा ताले आवाज को अंतु को बटा को ट्रांजैक्शन को अपन प्रेफर करंती डिजिटल और कैश?
2: डिजिटल पेमेंट जुगत तो है गलाडी।
1: हां
2: आउ हम मते डिजिटल ठीक है।
1: डिजिटल ता ठीक माने डिपेंडेंट पर है गलाडी ना
2: जेम दे। आ गया आ गया
1: माने आउ कैश कैरी करना
2: ब्रांड भी बेपार ही हो जी बड़ा बड़ा जो टेंशन आसु जी दूर दूर बाहर रहउ जी इंडिया बाहर हो जी।
1: हां
2: ओके पेमेंट दउ छु जो गाड़ी जो आसू माल बड़ बड़ माल बहुत भी डिजिटल पेमेंट।

0: वेलकम बैक माय फ्रेंड्स, सुन शांति आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक स्मृति रही आज रही सुंदर सकाळ रे आपण मानक सहित कनेक्टेड रही एंड पचारु छी आपण मानको जे डिजिटल पेमेंट और कैश पेमेंट कोटा को प्रेफर करंती आपण माने 0671203 नंबर रे आपण माने डायल करिकी मो सहित कनेक्ट हे परिवे। हेलो,
1: भगवान की पूजा करने से माँ बाप नहीं मिलते हैं, माँ बाप की सेवा करने से भगवान मिल जाते हैं। नमस्कार आज्ञा, सुबह सकाळ।
0: सुबह सकाळ नमस्कार, किए कहो चंदी?
1: राजहंस
0: रु प्रशांत आम सहित कनेक्ट हो जाय चंदी। तबे प्रशांत भाई को सहित आमे गत थर भी कथा हेतिलु ना, केमती अछंदी?
1: मैम आपंग सहित तो कथा हवा गोटे स्वप्न टाइप रनेक दिन के लगला के लगी जाइए जदि आप ट्रफिक रखी डिजिटाल पेमेंट जदि सहज किंतु कौन सी ना कौन सी परिस्थिति मनुष्य को परोक्ष अड़छुआ शिकार हो जाए। अवश्य डिजिटल पेमेंट बहुत सहज ए घर रही सब जिन करता बहुत मानने सहज उपाय किंतु वास्तवता ता भीतर जे मनुष्य अलछुआ में तो शिकार हो जाए।
0: अच्छा,
1: देखते सी जब बैंक रे जाउथिला ते से दिन टी जीव जाउथिला समय पास होउथिला आउ घरे रही कि जो समय पास रो गोटे माध्यम गोटे बंद हो गला। तेणु डिजिटल पेमेंट मानने बहुत सहज किंतु तार
0: अपकार बिल्कुल
1: महाप्रभु चर्चा से गोटे कमी महसूस करता हूँ भावक निकट अभाव को दूर।
0: अच्छा,
1: आपस्ट इयर से जिन ध्यान रखे मैम।
0: अच्छा, भावक निकट अभाव को दूर मान कौन
1: चर्चा
0: रखे? अच्छा, चर्चा कहते निश्चय से विषय चर्चा करवा भगवान जगन्नाथ
1: महाप्रभु लोकटा गाँव रहा लोक पैसा खर्च कर समय बाहर करके गले कंडीशन रखिला नड़िया टा जब महाप्रभु हाथ रू ने दब ना मो नड़िया फेर आण कौन वास्तविकता रही जिनस भावक निकट अभाव के दूर।
0: निश्चय आपणकर ए जो टॉपिक टी रही आम या प्रोग्राम करिवो आपण सुनिबे। तबे अच्छा आउ गोटे कथा कहंतु आपण ए जो डिजिटल पेमेंट कथा कहिले कैश पेमेंट विषय भी कहिले आपण निजे कोटा प्रेफर करंती माने कोटा करूछंती आपण माने डिजिटल पेमेंट?
1: मु होउछि मु बि डिजिटल व्यस्त माने अछि मु माने एते मात्र के नै जो जानंत व्यापारी को माल देछि से पेमेंट पठे देंती।
0: हां हां,
1: आउ से डिजिटल ही व्यवहार करे आउ माने एते मात्र के नै किंतु 40%
0: हिसाब। अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया माने वाइस वर्सा माने 50-50 करके आपण यूज करछंती बहुत भलो। थैंक यू।
1: एदर आपण सहमत कि नै परखरे लोक जेंति हमर हळ जगरे ट्रैक्टर आसी गला तसे जो
0: नै ठीक अछि कोनोसी आपण जो प्रतिटी जो जिनिस प्रतिटी

0: दृष्टि माने ये सेटा एक्चुअली ठीक जिनस कारण सब जिन कि पॉजिटिविटी अच्छी किसी ना किसी नेगेटिविटी अच्छी
1: ଯେମିତି ଆମର ବଳଦ ହଳ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦଶ ବର୍ଷ ମିନିମମ ସେ ଖଟୁଥିଲେ ଖାଉଥିଲେ ଆଉ ଏଇଟା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଷ ହେଇଗଲା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା ଯୋଉଠି ଦେଖ ରାସ୍ତାରେ ମାଳ ମାଳ ଷଣ୍ଢ ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ହିଁ ନାହିଁ
0: निश्चय निश्चय बहुत बढ़िया कथा बहुत सुंदर दिग प्रति आप दृष्टि आकर्षण कर बहुत बढ़िया लगे थैंक यू सो मच कॉल कर चेष्टा करंतु चेष्टा करंतु किछि प्रॉब्लम नाही
1: आपण सबले वास्तव कथा ध्यान दिए
0: निश्चय निश्चय आपण सबले चेष्टा करंतु आम शो रे आपण कनेक्ट होंतु मो शो रे बहुत भल लागिबो आपण सहित कथा हेकि थैंक यू सो मच कॉल करथिबारु सुनिश्चित आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक बहुत ही सुचिंतित मतामत आपण माने दउछंती एटा आमे ग्रहण करूछु ग्रहण योग्य बहुत भलो लागुछि आपण मानक सहित कथा हे कि डायलिन लाइव शो आउरी माने सुपर हिट चार चांद लागि जाउछि जेतेबेले आपण माने एते सुंदर सुंदर कथा कहउछंती आपण आम सहित 0671230315 ई नंबर रे एफएम रेनबो रे स्मृति आपण मानको पचारुछि जे डिजिटल पेमेंट और कैश पेमेंट कोटा को प्रेफर करंती एंड काहे के प्रिफर करंती हेलो
2: बिना ओठारे पणस बिना स्वार्थरे मणिष खोजी खोजी भाई हबो हताश नमस्कार
0: नमस्कार समीर भाई केडे सुंदर सुंदर कथा कहउछनु आपण स्टार्टिंग करियो बढ़िया लागियो अच्छा समीर भाई मत गोटे कथा कहतु ये सायरी है ये ओडिया बढ़िया ठढ़गटे मारदे कौट शिखुचान निजर तैयारी ना कौट
2: पढ़ु खोजा को पड़े आपण मान कौन हूँ कि कार्यक्रम भल हवा दरकार आपण 99% अवदान आम 0.001% चेष्टा करू टिके कार्यक्रम भल हब
0: जे
2: कहे कि ना जमी मान लिस्नर्स फास्ट चॉइस आरजे आरजे स्मृति मैडम कई जन तो श्रोता मान जो शुणुं कहे हाँ ये जन भाई कहते भल लगला
0: बढ़िया बढ़िया कथा कह चतुरी जानते बुझे बढ़िया कहते
2: शुणु आज्ञा आपण वक्ता आम श्रोता कार्यक्रम आपण पूर्वर कहते ना कार्यक्रम चार चांद लागुची केमिति लागिव जितेबेले आम भितर इंटरेक्शन आम भितर कथोपकथन सी तो मजादार हब आप जहां पचारिथिबे मु तार अप्रोप्रिएट आंसर जदि देली ताले आपणकर प्रश्नर भी मर्यादा रहिला मोर उत्तर दबार भी मर्यादा रहिला आपण पचारुथिबे गोटे कथा मु उत्तर दउथिबे आ गोटे कथा जेबे हेल भल लागिव
0: अच्छा कोंतु आजर टॉपिक उपरे कोन कहिबे
2: मु तो सैया कहली जे कथा हूँ आम तो पेमेंट करार अच्छी ना कैश हो कि डिजिटल पेमेंट यूपीआई पेमेंट हो समय को नहीं आमको चलने को पड़ो एवं गोटे कथा मु कह बेले बेले पैसा नथिले भी समय थी आम चिंता मु कह जितेबाला डिजिटल पेमेंट आसा मुझे अचानक पड़ी भुवनेश्वर काम थी बैक रे पड़ेली सी सी रही सी कह मो बारंग जी मत जयदेव बेहार छाड़देले मो बस रिलेटर ओल्ल पड़ी विश्वास कर पड़ी बस मो पा गोटे नुआ पैसा ना बस कंडक्टर जिते पैसा मागि मागे मागे मागे आसला जिते मो पाखापाखी अच्छे मुझे पचुक पचुक जाऊँ कथा मो पाखे पैसा ना कौन कह मन भल लगुनि गोटे बेजित लगे जिते पाखापाखीगला संजोग बशत सी कंडक्टर चिन्ह लोक सी गोटे मु गोटे मौका सीना से भर्ती गली जी पैसा ना हुए तो सी दीपद मत कही कहीं मत था कि प्रकार वर्तमान समय आम जाऊ आम ऑफिशियल ड्यूटी जो जाऊ आमको आम ऑफिस तरफ रु पैसा मिले क्या आकार जुआ गले टूर जीवार जाजपुर जीवार अच्छे जगत सिंहपुर जीवार अच्छे पूरी जीवार अच्छी आमको पैसा मिले जीवा आसा खर्च मिले गाड़ी में पेट्रोल पकड़ा पैसा मिले खाइबा पैसा मिले थे थे पैसा न लेकिन जो पलि जाऊ तो चिंता कर जाजपुर रु फेरुलू दिन पैसा नहींनु पड़ जाइछ बोलले जब जाई के होटल खाई बसी गलु मो सांगरे जितला पैसा त नै बस मोले बस चिंता काई खाई दियो आ गोता पर देखिवा खाई सला पर ऑफिस के फोन कुला मा अकाउंटन को स्कैनर पठि देलु तांकर होटल स्कैनर पठि देलु।

0: अरे रीमा सोलार पैनल लगे दे केबेठू मोर सबु सांग माने कहुतिले किंतु मु मानिली जेबे प्रधानमंत्री कहिले
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: मु प्रधानमंत्री कहिबा परे सोलार पैनल लगेली आउ मोर बिजुली बिल जीरो आसुची आपण भी लगांतु।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना सह जोड़ी हेबा पई विजिट करंतु pmsuryaghar.gov.in। सूर्य घर
3: म्यूजिकली योर आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को आपण माने सुनि छंदी समय वर्तमान 10:00 ऑलरेडी हे गलानी एंड सो मध्य साथे साथे स्टार्ट हे गलानी रेनबो एसएमएस सो इठी जो माने हमको नुवा करे की सुनि छंदी समस्तन को हमें कहो छो जे आपण माने आपण मानकर मनपसंद गीत सुनि परिबे से हिंदी फिल्म सॉन्ग हो ओडिया फिल्म सॉन्ग हो एल्बम गीत हो तो आपण माने सुनि परिबे व्हाट्सएप एवं एसएमएस माध्यम रे हमको मेसेज करी व्हाट्सएप जदि करबा पई चाहु छंती ताहले 8895254200 ए नंबर रे आपण माने व्हाट्सएप करि परंती हमरो ऑफिशियल व्हाट्सएप आईडी रे एंड आपण आपणकर मनपसंद गीत को फिल्म रो एवं से फिल्म रो को गीत सुनिबा पई चाहु छंती तार टिके डिटेल्स

एंड कोठु कहउछन्ती आपनक ना एड्रेस सह पठाइ दियंतु आमो पाखकु तो चलिए दोस्तों बहुत सारा लव लेटर सभी व्हाट्सएप में हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में भरा हुआ है क्या करे यार तबे समय नष्ट करिवानी आपन को लव लेटर्स पढ़िबा एंड गीत प्ले करिबा आम सहित कनेक्ट हेइछंती डम्बरुधर रथ शर्मा सुरक्षा सहाय सहयोग भवन सेक्टर 13 सीडीए कटक रु आमको व्हाट्सएप करिछंदी लिखले गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड सुनिया पई चाहिछंदी 1975 फिल्म मिली रो बहुत ही सुंदर गीत मैंने कहा फूलों से ये गीत टिकु एंड डेडिकेट करिछंदी टू माय डियर फ्रेंड एंड ऑल माय लवली श्रोता श्रोता ब्रदर्स एंड सिस्टर समस्तंकु तबे चलंतु डम्बरुधर रथ शर्मा आपनको पहुंचौछि आपनको मनपसंद गीत

सुनी चंदी आकाशवाणी एफ एम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक. सो चलंतु नेक्स्ट व्हाट्सएप रे किए मेसेज करछनी देखिबा. परमानंद महापात्र रामचंद्रपुर दुर्गापुर बांकी कटक रु आम सहित कनेक्ट होती शुणा पाई चाहिए अनाड़ी फिल्म का गाना क्या मौसम आया है गीतटी को एंड डेडिकेट कर गीतटी को समस्त ऑल श्रोता समस्त गुड मॉर्निंग जनई.

सुनी छे आकाश वाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक सो चली छी रेनबो एसएमएस स्मृति पड़ी छी अपन माने कर मीठा मीठा लव लेटर सज रही ब्यूटीफुल मॉर्निंग रे सो मोरा फिल्म रो गीत ना कजरे की धार ना मोतियों के हारे गीत टिको सुनिया पई चाहि छथि प्रमोद कुमार साहू डीह साही काधो पदा जगत सिंहपुर

समय वर्तमान सकाळ 10:24 मिनिट एंड रेनबो एसएमएस सो चली एते सारा एसएमएस अनुरोध रगीत ओके सो आम सहित एसएमएस माध्यम रे बहुत गुडे फ्रेंड्स जोड़ी चंती मुनी रानी सोना चंदन संजू संतोष निर्मला मामाली कांतो लाठगढ़ आम सहित कनेक्ट होती लिखले जय श्री राधे राधे ओडिया फिल्म अंजलि गोटे सुंदर गीत राति दरियार सपन बैते गीतटी को शुणापी चाहती ईरा महांती एवं विभु किशोर कंठरू सो चलंतो पहुंचौची आपनको मन पसंद रे सुंदर गीतटी

सुन चुनी आकाशवाणी एफ एम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक फ्रिक्वेन्सी बाहर जो मैंने आमको सुनी आमको न्यूज ऑन एआईआर आप लाइव स्ट्रीमिंग रे कनेक्टेड अच्छा आम सह तेरे चलत सो चली रेनबो एसएमएस एंड आमको एसएमएस पेज रे कनेक्ट होती रमेश चंद्र साहू ओहकमा भापो ढेकाना शुणापी चाहिए कहीं गले श्याम घन गीतटी बंधु महांती ओडिया चलचित्र

सो चलंतु नेक्स्ट एसएमएस को पढ़िबा। नेक्स्ट एसएमएस हम करछंती लक्ष्मी सरस्वती सिबानी चंदना माणियाबंध संतरावली बड़म्बारू आम सहित कनेक्ट होती लिखले जय जगन्नाथ समस्त को धन्यवाद दीदी आपणकर सब प्रोग्राम बहुत भल लगुच थैंक यू सो मच। सो शुणापी जाइंट सिर्फ तुम फिल्म गीत पहली पहली बार मोहब्बत की है लक्ष्मी सरस्वती शिवानी चंदना मणियाबंध संतरावली बड़म्बारू।

So samay bortoman 10ta baji 39 minute and so chalichi rainbow sms amaku sms kari chanti hemant chand tuku pradhan tukuna patra maniya bandha सुनिया पटना बड़ंबारु आम सहित कनेक्ट होती लिखले गुड मॉर्निंग स्मृति दीदी जय जगन्नाथ फूलो सा चेहरा तेरा गीतटी को शुणापी चाहती अनाड़ी मुवी रू

क्या करे यार, व्हाट्सएप एसएमएस इतने सारा मेसेज क्या मने सीमित समय भीतर समस्त गीत को प्ले करवा पॉसिबल होनी। तबे चौमुख बालेश्वर रु नूपुर कार्तिक पुरुषोत्तम बसुमती सौम्यरंजन पद्मावती सानू एवं ममता आम सहित कनेक्ट होती व्हाट्सएप रे। सोले फिल्म रो गीत सुनिया पई चाहिसंती होली के दिन दिल खिल जाते हैं गीत टेको

ओके समय सरी सरी आसलानि 10:52 ऑलरेडी 53 ऑलरेडी हेई गलानि एंड आपण मानंक सो मध्य शेष हेबा पई स्टार्ट हेलानि रेनबो एसएमएस सो देबी डोंट वरी यार गोटिए दिन भितरे दुई थरा आसुची आपण मानंकर अनुरोध र गीतर कार्यक्रम सो निहाती भाबरे आपण आपणक मनपसंद र गीत एबे नहले भी परिसुनि परिबे सो हम सहित कनेक्ट हेचेंदी उर्मिला निर्मला प्रत्युष प्रभाकर सेक्टर 11 सीडीए कटक रु लिखले स्मृति अपा नमस्कार सबु स्टाफ मानंकु नमस्कार सबु श्रोता मानंकु गुड मॉर्निंग होप आपण बहुत भलरे थिबे डिजिटल पेमेंट ना कैश पेमेंट कोटा आपण पसंद करती ए टॉपिक रे कॉल करितिबा श्रोता माने तांको निजस्व ओपिनियन देले समस्तंको धन्यवाद आमे ऑफलाइन रे बेसिक कैश पेमेंट आउ ऑनलाइन रे डिजिटल पेमेंट करू सिचुएशन देखि करबाकू पड़े आजिका डेट रे बोथ आर गुड ए तांको मत रखिचंदी एंड आजरो प्रोग्राम पूरा बढ़िया बढ़िया लागुची बोली से लिखिचंदी सेति पई आपणको आम तरफ रु ढेर सारा शुभेच्छा शुभकामना भल पाइबा थैंक यू दिल से ओके सुनिबे जाई चंदी कोटे लघु संगीत सबिता सबिता अमरेंद्र महंती कंठरु ए गीतटी को

तबे बहुत जन श्रोता मो सहित कनेक्ट हेथिले सुनील कांत महांती सिलु अंड आकृति देवकाली संखतराज कटकरु आम सहित कनेक्ट हेथिले हमसे जुड़े हुए थे दतरंगी भाटपरा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा पारसमणि वर्मा पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नोखीलाल वर्मा हमसे जुड़े हुए थे आम सहित कनेक्ट हेथिले करुणाकर मोहिनी एवं यक्षिणी बांगोरे आनंदपुर केउंझर आम सहित कनेक्ट हेथिले आम सहित कनेक्ट हेथिले सुचित्रा सेनापति शहीद नगर।

का बदन, वो भीगी भीगी हर धड़कन, वो गाल हया में डूबे हुए, वो होंठ वफा से लरसे हुए, वो आंखें सोई सोई सी, वो सांसें खोई खोई सी। कुछ बोलो क्यों खामोश हो तुम, इस दिल से क्या

दिल तुम्हारी फुरकत में एक सावन कोई लिखता है, क्या अब भी तुम्हारे होठों पर एक चुंबन कोई धरता है, क्या अब भी तुम्हारे शानों से मलमल का दुपट्टा गिरता है।

वेलकम ब्याक वन सेकेंड ट्यून करछन्दी 101.4 आकाशवाणी एफएम रेनबोक एक दिल से दिल तक सो चले छि कलाकार हां साथी सुरेश वाडकर का पूर्ण नाम होछि सुरेश ईश्वर वाडकर तांकर जन्म 7 अगस्त 1955 मसीहार महाराष्ट्र रो कोल्हापुर रे होइथला से एक मध्यमित परिवार रे जन्म ग्रहण करथिले सत परे तांका परिवार मुंबई को स्थान पळै आस्थिले एवं माता पितांकर परामर्श रे से छोटबळ सुरेश को मनरे संगीत प्रति अपार आकर्षण थिला

साथी ट्यून करछंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सोचलीची कलाकार हां साथी सुरेश वाडकरंकर संगीत जीवनर मूल भीति थिला शास्त्रीय संगीत से 13 वर्ष वयसरे तांका गुरु जियालाल बसंत तांको संगीत रे उच्च शिक्षा ग्रहण करिया पई प्रेरणा देथिले मध्यम

0: सदी सेठीकी नुए सुरेश वाडकर का असाधारण संगीत अवदान तंको अनेक पुरस्कार और सम्मान मध्य देजी पद्मश्री पुरस्कार 2021 रे पाइथिले संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार 2018 रे मध्ये पाइथिले 2023 रे लता मंगेशकर पुरस्कार मध्ये पाइथिले सुरेश वाडकर का गायक शैली एते सुंदर जे दर्शकों का श्रोताओं का हृदय को छुई जाए
1: तेरे नैना, तेरे नैना, तेरे।
2: तुम ऐसा करो ये गाओ

आजिकाली भारतर गाँमानंकर छातर रूप बदली गलाने जोठी छात उपरे खाली पांपड़ आउ लुगा सुखुथिला सेठी एबे बिजुली बिल जीरो हेउछि गाँ गाँ रे लोके सोलर पैनल लगेलेनि हां आपण भी लगे नियंतु 78,000 रो सब्सिडी देउछंती भारत सरकार 30 लाख रु अधिक परिवार एहार लाभ उठै सारलेनि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना सह जोडी हेबा पई विजिट करंतु pmsuryaghar.gov.in

0: आरे रीमा सोलार पैनल लगे दे सोलार पैनल लगे दे केबे ठु मोर सब संग माने कहुतिले किंतु मु मानिली जेबे प्रधानमंत्री कहिले
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: मु प्रधानमंत्री कहिबा परे सोलार पैनल लगेली आउ मोर बिजुली बिल जीरो आसुची आपण भी लगांतु
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना सह जोड़ी हेबा पई विजिट करंतु pmsuryaghar.gov.in।

वेलकम बैक वन सेकंड ट्यून करछन्दि 100.4 आकाशवाणी एफएम रे मकटक दिल से दिल तक सो चली छी केची कथा किछी गीत हां साथी समस्तक लाइफ रे माने आम समस्तक लाइफ रे केबे ना केबे कहा सहित तो प्रेम निश्चिंत होइथिबो किंतु किंतु आज समाज रे अनेक प्रेम को आकर्षण किंबा स्वार्थ सहित तुलना करि दउछन्दि किंतु साथी प्रकृत प्रेम एहाठार बहुत ऊर्धरे सत केवल सत प्रेम केवे लाभ क्षतिर हिसाब करेनि हां साथी ये तो केवल अन्यर सुखरे निजकु सुख सुखी खोजि थाए जेउ प्रेमरे सम्मान अछि भरोसा अछि एवं निष्ठा अछि ना सेई प्रेम हि सत प्रेम ए जमिति मार प्रेम होचे पृथ्वीर सबुठारो पवित्र प्रेम गोटि मा ता संतान पई जेते त्याग करंती ना तार कोनोसी भी तुलना न थाए संतान जन्म हेबा पूर्वरु मध्य मा ताको हृदय स्थान दे दी थाए संतानर खुशी पई से निजर समस्त खुशी को बलिदान देबा को प्रस्तुत थाए मार एही निष्काम प्रेम सतरे अनन्य सेथि पई त कह जाए मा को प्रेम कहा सहित भी तुलना करहबनी

वेलकम बैक वन सेकंड ट्यून करछंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सो चले छे केछि कथा केछि गीत। हां साथी, प्रेम केवल मणि समथिन सीमित नहि, प्रकृति प्रेम मध्य, पशु पक्षी प्रेम मध्य रहिछि, देश प्रति प्रेम मध्य सम्मान भाव रे महत्वपूर्ण। जेउ व्यक्ति प्रकृति को भल पाए ना, तार सुरक्षा पई सचेतन रहिथाय। जेमितिके गच्छ, नदी, पहाड़ एवं जंगल प्रति आमर प्रेम परिवेश को सुरक्षित रखिबार सहायक हुए।

दिल तक सो चली किसी कथा किसी गीत हाँ सारी ये जमी आज व्यस्त जीवन रे ना आम अनेक समय रे प्रेमर प्रकृत मूल्य को भूली जाऊ संपर्क भरोसा एवं आंतरिकता कमी जाऊ तेणु आम प्रेमर सत अर्थ को बुझा निहाती आवश्यक साथी प्रेम केवल कथार नुहे कार्यर प्रकाश पाइबा मध्ये उचित अन्यर दुखरे साथी हेबा आवश्यक समय रे सहायता करिबा एवं सम्मान देबा होउछि प्रकृत प्रेम हाँ साथी एमिति प्रेम ही मनुष्य जीवन को माने आम जीवन को सार्थक करिथाय जहां हमको मानविकतार पाठ पढ़ाए एवं जीवन रो प्रकृत अर्थ बुझाए प्रेम थिले जीवन रे समस्त कष्ट सहज लागे एवं दुख मध्य सहनीय हो जाए साथी प्रेम होउछे आम जीवन रे सबुठारो बड़ शक्ति जहां हृदय को हृदय सहित जोड़ी थाए समाज रे शांति आनी थाए संप्रति आनी थाए भाईचारा मध्य स्थापन करी थाए तेणु समस्ते एमिति प्रेम को निज जीवन रे स्थान देबा उचित ना

मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की

सेवा के लिए वापस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

0: हीरो था ए आज खाई बाबू ते लेबू गिफ़ा दे
1: पसंद है लानी ठीक अच्छी सुनो

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबको विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका और मन्नत जी ने। लिखते हैं
0: मानव की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती
2: जी।
0: एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए।
2: धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
0: तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगहत परवीन अब्बासी शाहनवाज अब्बासी सरफराज अब्बासी।
2: कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी।
0: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है
2: सप्रेम नमस्ते जी। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पेड़ पौधे लगाना पक्षियों को दाना खिलाना डायरी लिखना और दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाना कार्य कर सकते हैं।
0: आगे आप लिखते हैं सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी उमंग कार्यक्रम में गर्मी से संबंधित विषय पर जानकारी एवं जो अन्य कार्यक्रम सुनाए जा रहे हैं बेहद पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम सुनकर गर्मी में भी दिल को ठंडक का एहसास हो रहा है
2: जी।
0: आपने यहीं पर विराम नहीं दिया, आपने आगे लिखा है
2: भारत के वीर सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला वीर गाथा उमंग कार्यक्रम में सुनवाई जा रही है वो प्रशंसा योग्य है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी एवं लांस नायक अलवर टिक्का जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनकर हमारी आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम बेहद पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए समस्त उमंग टीम का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को। और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए।
0: तो विमलेश जी अब ये बताइए कि ये भी जानिए श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा।
2: अजीत जी इस सप्ताह हम पूरे विश्व परिवार की अनेक रोचक परंपराओं की चर्चा करेंगे
0: जी।
2: आज की चर्चा का विषय होगा जापान का चाय समारोह, इसे टी सेरेमनी भी कहा जाता है और जापानी भाषा में इसे चानु यू कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सुंदर और अनुशासित परंपराओं में से एक है
0: जी। हाँ श्रोताओ, जापान की चाय परंपरा केवल चाय पीना नहीं लेकिन सम्मान शांति अनुशासन और व्यवहार की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आइए जानते हैं विमलेश जी से कि ये परंपरा जापान में कब शुरू हुई।
2: जी अजीत जी, हम सब जानते हैं कि चाय की शुरुआत चीन से हुई है। 9वीं शताब्दी की बात है जब कुछ बौद्ध भिक्षु चीन से चाय की पौध लेकर जापान आए और तब चाय का प्रचलन जापान में भी शुरू हुआ।
0: लेकिन विमलेश जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो जापानी चाय समारोह को इतना विशेष बनाती हैं कि हम उसकी चर्चा कर रहे हैं।
2: जी अजीत जी, जापान में चाय पीना एक विशेष अर्थ रखता है।
0: जैसे?
2: जैसे कि वहाँ चाय पीना एक औपचारिक और सामान्य बात नहीं है। इस समारोह में बहुत सी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए अपने श्रोताओं को कुछ जापानी शब्दों से भी परिचित कराते हैं जो वहाँ की चाय परंपरा को खास बनाते हैं।
0: जी सचमुच चाय पीने के संदर्भ में इन जापानी शब्दों को जानना बड़ा रोचक रहेगा।
2: अजीत जी, भिक्षुओं ने इसे आध्यात्मिकता से जोड़ दिया और इसके कुछ नियम बनाए।
0: तो क्या क्या नियम है इसके?
2: जापान का चाय समारोह चार मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है वाह।
0: वाह यानी?
2: यानी हारमोनी या सामंजस्य।
0: और दूसरा शब्द क्या है?

0: दूसरा शब्द है केई
1: जी
0: यानी रिस्पेक्ट या सम्मान।
1: और श्रोताओ तीसरा शब्द है सेई यानी पवित्रता या प्यूरिटी और चौथा शब्द है याकू यानी आंतरिक शांति या इंटरनल पीस।
0: श्रोताओ इन चार सिद्धांतों पर टिकी है जापानी चाय परंपरा जिससे हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी अर्थपूर्ण है। तो जी अब करते हैं साझा कुछ और रोचक बातें जो जापानी चाय परंपरा में अनिवार्य मानी जाती हैं।
1: जी हाँ, तो श्रोताओ चाय समारोह में अतिथि सर झुकाकर अभिवादन करते हुए चाय का कटोरा दोनों हाथों से लेते हैं, ये सम्मान दर्शाने का प्रतीक है।
0: जी एक और खास बात ये है कि इस परंपरा में अतिथि चाय का कटोरा लेकर कटोरे को मेजबान की तरफ देकर हाथ को हल्का सा घुमाता है। इस कार्यक्रम में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि अतिथि कहाँ बैठेंगे, उन्हें कैसे आराम दिया जाए, ये भी ध्यान दिया जाता है कि प्याला कैसा होगा।
1: जी और अब एक जानकारी और आपको दे दें कि ये समारोह का आयोजन पारंपरिक तौर पर कहाँ होता है।
0: ये समारोह अक्सर एक शांत टी हाउस या चाय कक्ष में होता है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। फर्श पर परंपरागत चटाई बिछी होती है, बाहर छोटा सा बागीचा भी हो सकता है। चाय घर या कक्ष को जापानी में चा शित्सु कहा जाता है। पारंपरिक रूप से चाय पार्टी में किमोना पहना जाता है। चाय कक्ष के मार्ग में रंगीन छोटे छोटे पत्थर मार्गदर्शक के रूप में लगाए जाते हैं।
1: यानी कुल मिलाकर ये चाय समारोह सादगी, विनम्रता और प्रकृति के सौंदर्य का मेल कहा जा सकता है।
0: जी
1: विमलेश जी, हमने ये तो बताया ही नहीं कि जापानी चाय समारोह में कौन सी चाय परोसी जाती है।
0: अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। श्रोताओं, इस समारोह में माचा चाय दी जाती है। ये चाय की हरी पत्तियों को पीसकर पाउडर की तरह बनाई जाती है। जहाँ तक इसके स्वाद की बात है, स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है।
1: कड़वा हो सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले एक जापानी मिठाई दी जाती है जिसे वागाशी के नाम से जाना जाता है। पूरे जापान में ये मिठाई बहुत ही लोकप्रिय है। और श्रोताओं, एक खास बात आपको बताएं, प्रत्येक मिठाई बिल्कुल कलात्मक दिखाई देती है।
0: जी तो श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा हमें सिखाती है कि चाय पीना मात्र चाय पीना ही नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी शांति और सुंदरता के साथ जीना है।
1: तो ये चाय समारोह हमें संदेश देता है कि साधारण सी चीज यानी एक कप चाय भी सम्मान, परस्पर सामंजस्य और व्यस्त जीवन में गहरी शांति का अनुभव बन सकती है।
0: जी तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी जानकारी, ये जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
1: और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: जी तो चलिए अब रुख करते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है संवदिया।
0: ये कार्यक्रम हमें उस समय की याद दिलाता है जब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम नहीं थे। उन दिनों में संवाद या कोई सूचना लेकर जाने वाले को संवदिया कहा जाता था। संवदिया मात्र संदेश या पत्र वाहक ही नहीं थे, लेकिन समाज के महत्वपूर्ण सेतु थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे। कार्यक्रम एक मार्मिक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
2: आजकल तो घर बैठे ही कहीं से कहीं खबर भेज सकते हैं और वहाँ का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं। फिर आज बड़ी हवेली से बड़ी बहुरिया की ओर से हरगोबिंद संवदिया की बुलाहट क्यों हुई?
3: हाँ, लो आ गई बड़ी हवेली। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी ना मालूम हो, परेवा पंछी तक न जाने। हाँ, पाए लागू बड़ी बहुरिया।
4: आ गए भैया।
3: हाँ।
4: लो ये पीढ़ी सरका लो, कुछ देर बैठ जाओ। हाँ।
3: बड़ी हवेली तो अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, जहां नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी। आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर फटक रही है। ओह, कहां गए वो दिन? बड़े भैया क्या गए, जैसे सब थे।

0: तीनों भाइयों ने आपस में झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दखल कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहां जाती बेचारी? अरे ये मुदियाइन बूढ़ी काकी काहे बड़बड़ा रही है?
1: आए देखो बड़ी बहुरिया, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है, पर दाम देते समय कड़वा। मैं तो आज दाम लेकर ही उठूंगी यहाँ से। हाँ
2: अरे मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है।
1: क्या कहा? काबुली कायदा? फिर काबुली का नाम लिया तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। हाँ
2: लो
1: देखो जी, मैं फिर आऊंगी और अब की बार उधार लिए बिना हिलूंगी नहीं यहाँ से, कहे देती हूँ। बड़े आ जाते हैं उधार लेने, मांगने जाओ तो वापस नहीं करते।
3: हर गोविंद भाई, तुमको एक संवाद ले जाना है, आज ही। बोलो, चाहोगे ना?
2: कहाँ बड़ी बहुरिया?
3: मेरी माँ के पास।
2: माँ के पास? कहिए क्या संवाद है?
3: माँ से कहना मैं भाई भाभियों की नौकरी कर अपना पेट पालूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए, किसके लिए?
2: बड़ी बहुरिया,

0: हर गोबिंद भैया, ये 5 का नोट ही बचा है अब, पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी, अब आने का खर्च माँ से मांग लेना।
1: नना नना बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा।
0: तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? और सुनो, लगता है सुनते ही भैया तुम्हारे साथ आ जाएंगे।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा बहुरिया, आप फिक्र मत करिए। ये नोट रखिए, हाले गाढ़े काम आएंगे। अच्छा, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही निकल जाऊंगा।
0: अच्छा, मैं तुम्हारी राह देखती रहूंगी।
1: अच्छा, चलता हूँ।
0: अच्छा,
2: संवाद यानी संदेश पहुंचाने का काम सहज नहीं होता। प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से सुनाना बहुत कठिन है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचाए, उसको और क्या कहेंगे, निठल्ला, कामचोर, पेटू और क्या क्या नहीं। पर सच ये भी है कि गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहु बेटी का संवाद हर गोबिंद ने नहीं पहुंचाया है।

0: साहब।
1: हाँ
0: थाना बिहपुर में ये गाड़ी रुकती है या नहीं?
1: अरे भैया थाना बिहपुर में सभी गाड़ियां रुकती हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ और मैं भी वहीं पर उतरूंगा।
0: अच्छा
1: घबराओ मत, बता दूंगा।
0: तो कितना समय और लगेगा?
1: अरे बस थोड़ी दूर है, आने वाला है।